0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस।
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
2: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: पंचम, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello
3: Banaras,
1: 91.2 FM, Hello Banaras,
4: Hello Banaras।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: A ladka

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धाम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.
1: Allad.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello,
1: Banaras.
3: 91.2 FM,

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM. Hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस,
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ तो

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस।

0: Yes.
1: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
0: दिल के बहुत करीब बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
0: अल्लड़ पक्कड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस।
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
5: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो।

0: 101.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, दुहावली।

0: सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं,
1: आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है? कि आप जिंदा हैं। तो अगर आप कल भी जिंदा हो तो बस एक मुस्कान दें, वाह सुबह 8 बजे, वाह 8 बज गए, अब भी जिंदा हूं। हर एक घंटे में ये एक्सरसाइज करें, ठीक है? हर एक घंटे में बस खुद को ये याद दिलाएं, चेक करें, चालू है। कृपया इसे समझ लें। अगर आप भगवान के बारे में सोचते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। सिर्फ तब जब आप अपनी मौत को लेकर जागरूक होंगे, आप वाकई इस जीवन की प्रकृति को जानना चाहेंगे। जब आपको पता होगा कि आप अभी चल रहे हैं, कल सुबह हो सकता है आप पुफ गए। अब आप जानना चाहेंगे,
2: What the hell?
1: ये है क्या?
0: गुरु वाणी
3: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
4: पक्का बनारसी।
0: गुरु वाणी। श्री श्री रविशंकर कहते हैं,
5: तुम बैठ के सोचते हो तो नई दृष्टि खुलने लगती है। चिंतन जागती कब? चिंता से जब दूर होते हो तो। हमारा मस्तिष्क एक ही कर सकता वहाँ, चिंता या चिंतन। अक्सर चिंता में ही डूबे रहते सब, चिंतन के लिए कहाँ किसी को समय होता। कोई कोई विरले होते हैं। देखो, जो चिंता में डूबे रहते हैं वो औरों को चिंता में खींचते हैं। इसी तरह जो चिंतन में रहते हैं इनको भी वही रवैया अपनानी पड़ेगी। चिंतन में सबको लेके चलो। बोलो क्या बात है, किस लिए चिंता कर रहे हो? जागो, मरे जाने वाले हो, मृत्यु को याद करो, तुम तो मर ही जाओगे। कहाँ यहाँ शाश्वत रहना है? देखते देखते ऐसे जिंदगी निकल जाती है, समय बीता जा रहा है। जागो, जल्दी जागो, मस्त हो जाओ। ये आवाज मैं तो दे ही रहा हूँ, तुम लोग भी सब लोग देना शुरू कर दो। हर एक व्यक्ति को यही आवाज देनी, अरे जागो क्या है, मुस्कुराओ, हंसो और हंसाओ।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
4: पक्का बनारसी।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
4: पक्का बनारसी।
6: शुक्रवार का शुभारंभ सिर्फ हेलो बनारस के साथ 91.2 FM।
7: हेलो बनारस दुहावली,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस,
8: हेलो बनारस।
0: गुरु वाणी। सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं,
9: मैं कह रहा हूं कि अपनी उन्नति के लिए एक वातावरण बनाइए। अगर आप अपने अंदर आनंद और श्रद्धा का वातावरण नहीं बनाते, श्रद्धा मतलब किसी चीज के लिए या किसी के लिए नहीं, ये होने का एक तरीका है, ये होने का एक खास तरीका है। श्रद्धा मतलब आप ग्रहणशीलता की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि जीवन कृपा से ही सबसे अच्छी तरह घटित होता है। आप लगातार ग्रहणशील बने रहते हैं, आप अपने दिमाग की चीजें निकाल कर किसी पर झाड़ते नहीं फिरते, आप विधाता की बुद्धिमत्ता को अपने में समाना चाहते हैं। कई बार आप प्लान करते हैं, आज मैं इसे अपने दिमाग की ये बात ढंग से बता दूंगा। नहीं, अपनी दिमागी चीजें मत देते फिरिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास तो फिर कुछ नहीं बचेगा।
0: गुरु
3: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
4: पक्का बनारसी।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
4: पक्का बनारसी।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस,
8: हेलो बनारस।
0: गुरु वाणी। श्री श्री रविशंकर कहते हैं,
10: गुरु जी, भगवान से कितनी प्रार्थना करनी चाहिए और कितना मांगना चाहिए?
5: ये तो तुम पर है, जो बुद्धिमान हो तो एक ही चीज मांगेगा, भगवान मुझे अपना लो। ये बुद्धिमान है, और थोड़ा इससे कम बुद्धिमान है वो मांगेगा मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ज्यादा नहीं। और कम बुद्धिमान हो तो बहुत कुछ चाहिए मांगता ही रहेगा, और बिल्कुल ना समझ हो तो उसको याद भी नहीं रहेगा क्या मांगा है मैंने।
0: गुरु
3: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
4: पक्का बनारसी।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
4: पक्का बनारसी।

तुलसी सब छल छाड़ के कीजे राम स्नेह, अंतर पति सो है कहां जिन देखी सब देह। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब छल कपटों को छोड़कर भगवान की सच्ची हृदय से भक्ति करो। उस पति से भला क्या भेदभाव है जिसने सारे शरीर को देखा हुआ है। भाव यह है कि जैसे पति अपने पत्नी के सारे शरीर के रहस्यों को जानता है, वैसे ही प्रभु सारे जीवों के सब कर्मों

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: 91.2 FM. Hello Banaras.
3: Hello Banaras.
4: Hello Banaras. Duhawali. सिला सांप मोचन चरण सुमिरहु तुलसीदास तजहु सोच संकट मिटहि पूजहि मन की आस। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिला को शाप से मुक्त करने वाले श्री राम के चरणों का स्मरण करो और सब चिंताओं का त्याग कर दो। इस प्रकार अनन्य श्री राम के चिंतन से तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी।
2: 91.2 FM. Hello Banaras.
3: Hello Banaras.
5: गुरु वाणी।
6: गुरु गोपाल दास जी कहते हैं,
7: कबीरदास जी ने बहुत अच्छी चीज की कही है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से धन घटे, कह गए दास कबीर। चिंता से चतुराई घटे। जब चिंता होती है ना तो इंसान के ठीक से सोचने की जो कैपेसिटी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर एक तालाब अगर आप देख लीजिए पानी का, तालाब में पानी अगर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा है ना तो तले पे क्या है दिखाई नहीं पड़ता। अगर तालाब के तले पे क्या है वो देखना है तो पानी को शांत होने देना पड़ता है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर ठीक से क्या है देखना है, क्लैरिटी के साथ देखना है, क्लैरिटी के साथ निर्णय लेना है, चतुराई से देखना है, तो मन को शांत रखना पड़ता है तालाब की तरह। जिस मन में वो उथल पुथल है जैसे तालाब में उथल पुथल है, तालाब के तले पे कुछ दिखता नहीं और जिंदगी में सामने कुछ दिखता नहीं। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और बहुत ज्यादा दुख जब मन में होता है ना तो शरीर घटने लगता है, शरीर की बीमारी होने लगती है। इसलिए कहते हैं ना, अगर बर्तन में खिचड़ी पके, अगर बर्तन में खिचड़ी पके तो बीमार इंसान भी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर दिमाग में खिचड़ी पके तो अच्छा इंसान भी बीमार हो जाता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से धन घटे। जिस जिस लोभ से लोगों ने इतने स्कैंडल किए, स्कैम किए, लफड़े किए, झमेले किए, पैसा ऐसा आया लेकिन पकड़े गए तो ऐसा गया। लोभ से धन घटे, कह गए दास कबीर।
5: गुरु वाणी।
0: 91.2 FM. हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: पक्का बनारसी।
2: 91.2 FM. हेलो बनारस।
3: हेलो बनारस।
4: हेलो बनारस, दुहावली। सबई कहावत राम के, सब ही राम की आस, राम कही ही जे ही आपनो, तो ही भजू तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं, सभी श्री राम के भक्त कहलाते हैं और सभी को श्री रामचंद्र की ही आशा है, परंतु हे तुलसी, तू तो उसी का भजन कर जिसको स्वयं श्री रामचंद्र जी अपना भक्त कहते हैं।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।

0: वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर.
2: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु. शुरू हो चुका है हमारा शो मॉर्निंग लाउड स्पीकर ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर. और अभी हम आपको बता दें कि बज चुका है घड़ी में 9, तो इसका मतलब बिल्कुल है साफ कि अब सुधांशु आ चुका है अपना मॉर्निंग वाला लाउड स्पीकर लेकर के. और दिन है आज का शुक्रवार, तो कहीं जाने का नहीं, बस 3 घंटे ढेर सारी मस्ती करने का और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का. तो इसके लिए बस आप सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस. बोले तो विद आरजे सुधांशु, यही है पक्का बनारसी.

0: हाइट्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर.
2: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु. चल रहा है हमारा शो मॉर्निंग लाउड स्पीकर ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर. और आज अपने लाउड स्पीकर के माध्यम से हम आप सभी को बता दें कि सुनो सुनो सुनो, अगर आप करना चाहते हो किसी को विश या देना चाहते हैं उन्हें ढेर सारी बधाइयां, तो बस इसके लिए कहीं जाने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, बस व्हाट्सएप करने का 9839912912. इस पर आप कीजिए व्हाट्सएप. सुधांशु बैठा हुआ है ना आपके बिहाफ पर, करेगा उन्हें विश जिसे सुनेगा सारा विश्व ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर. तो भैया कहीं जाने का नहीं, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ है सुधांशु. यही है पक्का बनारसी.

0: गया है गोरी।
1: तो क्या हुआ?
0: हो गया बहुत जरूरी।
1: चल पगली।

0: 91.2 FM. हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।

सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।

0: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
1: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी।
0: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज है।
2: है ना, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि गांव की गलियों, खेतों, घरों और लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, और आज की कहानी है कानपुर देहात की। एक ऐसा जिला जिसकी पहचान गाँव की मिट्टी, खेती किसानी, मेहनत कश लोगों और बदलते ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। यहाँ की तस्वीर में परंपरा भी है और विकास की नई उम्मीद भी।
0: और यही बदलाव आज हमारी कहानी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का जोर इस बात पर है कि विकास की रफ्तार गांव तक पहुंचे और हर क्षेत्र को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: सड़क, रोजगार, स्वरोजगार, बुनियादी सुविधाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं, यानी विकास की ऐसी तस्वीर जिसमें उत्तर प्रदेश के गांव भी नए उत्तर प्रदेश की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े।
0: यानी आज बात होगी विकास की कहानी आम लोगों की जुबानी।
1: तो चलिए चलते हैं कानपुर देहात के उस ग्रामीण परिवेश की ओर जहां बदलाव को महसूस किया जा सकता है और सुनते हैं वहाँ के लोगों की अपनी कहानी।
0: उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि विकास की योजनाएं कागजों तक सीमित ना रहें, बल्कि उनका लाभ गांव, घर, परिवार तक पहुंचे। सड़क हो या रोजगार हो या स्वरोजगार, हर क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ने का अवसर भी मिले।
1: और यही सबसे अच्छी बात है कि जब किसी योजना का लाभ सीधे किसी परिवार तक पहुँचता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उससे पूरा परिवार मजबूत होता है और आत्मनिर्भरता की राह आसान होती है।
0: तो अब सुनते हैं उस व्यक्ति की आवाज़ जिसने खुद इस बदलाव को महसूस किया है।
2: श्याम सुंदर कमल, ग्राम बखरिया, ढाकन सिवली से रहने वाला हूँ। मैं कानपुर में मिस्त्री टाइल पत्थर का काम करता था। अटेंडम एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया। बुखार में बच्चे अच्छे सब घबरा गए मेरे, तो उन्होंने मुझे लाद के डॉक्टर के यहाँ ले गए। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो हम हृदय रोग संस्थान में एडमिट हो गए। वहाँ करीब जहाँ पे डॉक्टर ने जांच की तो उसमें उन्होंने बताया कि अटैक इनकी बीमारी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कम से कम खुद नहीं तो कम से कम 3-4 लाख रुपया लगेगा। हम दो तीन में पड़े रहे वहाँ पे, कुछ इलाज चलता रहा, जो घर का था सब खत्म हो गया, लाज गल्ला जो था वो भी सब बेच दिया। इसके बाद में मेरे पिताजी एक दिन देखने गए तो उन्होंने मुझे कागज़ दिखाया। तो वो कागज़ मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये तो आयुष्मान कार्ड वाला है, इससे आपका इलाज हो सकता है। तो उसी से मेरा फिर वहाँ इलाज शुरू हुआ। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर मशीन पड़ी, तब से आज तक मेरा वहीं से इलाज भी चल रहा है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो उन्होंने मेरी वक्त पे, बुरे वक्त पे उन्होंने साथ दिया मेरा, मैं उनका दिल से आभारी हूँ।
1: सुना आपने, यही तो विकास की असली तस्वीर है जब सरकारी प्रयास लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं तो योजनाओं का उद्देश्य भी सार्थक होता है।
0: और उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। गांव हो या शहर, किसान हो या छोटा कारोबारी, हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
0: लेकिन हरी, ये बताइए, किसी योजना की सफलता को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: वो तो लाभार्थियों से पूछिए।
0: बिल्कुल सही। तो चलिए एक और लाभार्थी से जानते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया और सरकारी मदद ने उनके लिए किस तरह की नई संभावनाएं खोली।
3: मेरा नाम वंदना पाल है, मैं ग्राम तातमो खबरा की निवासी हूँ। मेरी एजुकेशन एमए है। मेरी शादी 2016 में हुई थी। 16 में शादी होने के बाद हम घर में ही रहते थे, जैसे घर का काम करते थे और हमें बाहर आना जाना नहीं होता था। 2022 में हमारे यहाँ ब्लॉक से कुछ दीदियाँ आईं जिन्होंने हमें समूह के बारे में जानकारी दी। हमने भी अपना समूह में जुड़ने का निर्णय ले लिया, जिसमें हम अध्यक्ष पद पे थे। मेरे समूह का नाम सागर महिला स्वयं सहायता समूह है। और क्या कहते हैं, 2 महीने बाद जब हमें समूह में जुड़ने के बाद 2 महीने बाद पता चला कि ब्लॉक में कुछ वैकेंसियाँ निकली हैं, जैसे समूह सखी और बैंक सखी ये सब निकली थी, जिसमें हमने बैंक सखी के पद पे फॉर्म डाला था, जिसमें हमारा 60 दिन की ट्रेनिंग आर शेट्टी अकबरपुर में हुई थी। उसके बाद हमको बैंक में 2022 अगस्त में हमको ज्वाइनिंग मिल गई थी। उसके बाद हम बैंक में आना जाना शुरू किया, वहाँ पे हम बैंक में रह के समूह की दीदियाँ, जैसे नए पंचायतों में खाते खुलते थे बनते थे, उसमें हम उनके खाते खुलवाते थे, जब 6 महीने पूरे हो जाते थे उनका लोन पास करवाते हैं। ऐसे चलते चलते हम ब्लॉक में एक दिन गए तो हमें वहाँ पे पता चला, मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना के बारे में पता चला, जिसमें हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमारा वो लोन भी पास हो गया और हमें 5 लाख का लोन मिला, जिसमें हमने किराने की दुकान की। ये पैसा हमको मतलब हाथ में नहीं मिला, इसके लिए जो हम सामान लाए उसके लिए मिला था। हम मतलब समूह में जुड़ के हमने काफ़ी कुछ किया, उसके पहले तो हम गरीब में रहते थे, अब हम भी अपना कुछ अपना खर्च निकाल सकते हैं अपने पैरों पे खड़े होके। हम तो सबसे यही कहते हैं सभी दीदियों से कि समूह में जुड़िए और समूह से लाभ उठाइए। मुख्यमंत्री युवा उद्यम के बारे में अगर हम भी नहीं जान पाते तो हम भी घर पे होते और बस वही थोड़ा समूह का काम करते होते। जब हमको इसके बारे में जानकारी मिली तो हमने ये अपना लोन करवाया और हम इसमें आगे बढ़े। हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी योजना ये शुरू की है, जिससे हम लोगों को, हम गृहिणियों को भी इसमें आगे बढ़ने के लिए लाभ मिल सकता है। जब ये हमारे यहाँ मेरे पास ये किराने की दुकान नहीं थी तो मेरे घर का खर्च मेरे पति ही चलाते थे, अब हम उनका हाथ बटा सकते हैं और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। अब हमारा जीवन कुशल पूर्वक है और शांति से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं।
1: वाह, इनकी बातों में सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि आगे बढ़ने का भरोसा भी सुनाई देता है।
0: और यही भरोसा उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा की ताकत है। सरकार की योजनाएं तभी प्रभावी बनती हैं जब उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और वो लाभ उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए।
1: अब इस पूरे विकास कार्य से जुड़े अधिकारी से जानते हैं कि सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ रही है।
4: मैं विधान जायसवाल और मैं इस जनपद कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ पिछले लगभग 6 महीने से।
1: सबसे पहले सर श्रोताओं की ओर से जानना चाहेंगे कि जनपद कानपुर देहात में वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी प्रभावी योजनाएं संचालित हो रही है।
4: देखिए, शासन की विभिन्न योजनाएं हमारे जनपद कानपुर देहात में भी संचालित हैं और मुझे खुशी है कि विभिन्न जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं में लोगों को लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से हम देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगजन पेंशन, गरीब बच्चियों के जिनकी शादी नहीं हो जाती उनके लिए हमारे समाज कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, शादी अनुदान योजना जिसमें उनको कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिसमें किसी अनटाइमली डेथ पे जो है कुछ सरकार जो है मदद करती है, इसी तरह पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है पूर्व दशमोत्तर, किसानों के लिए उनके सम्मान राशि के रूप में भारत सरकार के योजना के अंतर्गत किसान सम्मान निधि देते हैं, फसलों के लिए अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दैवीय आपदा राहत योजना, इसी तरह DBT के माध्यम से अगर पशुओं को भी आप रख रहे हैं तो उसमें भी तमाम योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत जो है लाभ पहुंचा रहे हैं। हर घर में नल हो जल हो उसके लिए हमारी ग्रामीण जो हमारी पाइपलाइन सप्लाई है उसके अंतर्गत, इसके अलावा भी हमारी एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो पहले आप लोग जिसको नरेगा के नाम से जानते होंगे वो भी जो है BBG राम जी के नाम से और भी बेहतर ढंग से जनपद में संचालित कराई जा रही है।
1: जो भी योजनाएं आपने बताई इनका जो हमारे खासकर ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको प्रत्यक्ष कैसे लाभ मिल पाए।
4: हमारी योजनाएं जो जमीनी स्तर पे जब लागू होती हैं उसका सीधा सीधा इसमें जो प्रभाव है और उसका लाभ है उस गरीब व्यक्तियों को मिलता है, जिसका असर जो है ग्रामीण जीवन पे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बहुत ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। आप देखेंगे हमारे जो भी गांव हैं, गांव में गरीब लोग रहते हैं, उनके पास यदि उनकी खुद की ज़मीन है तो तो उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी भी उनकी पात्रता हो उनके अंतर्गत उनको पक्का मकान हम बना रहे हैं। लाखों पक्के मकान हम लोगों ने बना लिया है अभी तक, और आगे भी जैसे जैसे इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते जाते हैं वैसे वैसे इनको हम नए पक्के मकान बनाते हैं। इसी तरीके से बीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत 125 दिन का, जो पहले नरेगा के अंतर्गत 100 दिन था, उसको सरकार ने 125 दिन कर दिया। जो मजदूरी है वो भी बढ़ा के 300 रुपये के करीब कर दी है। तो उस सारी चीज़ें जो है रूरल जो हमारी इकॉनमी है, रूरल जो हमारी लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, उनको उनकी आय और उनके जीवन को बेहतर ढंग से और आगे बढ़ाने के लिए ही लागू की जा रही हैं।
1: सर, इसी के साथ क्या कोई ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सरकार की किसी योजना का लाभ लिया हो और वो आज आगे सकारात्मक बढ़ रहा हो?
4: ऐसे तो आप देखेंगे तो कानपुर देहात में अनगिनत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे
1: जी।
4: सरकार हमारी जो है और जो हमारे विभाग हैं जिले स्तर पे, उनमें आप देखेंगे हम निराश्रित, जैसे अगर कोई वृद्ध हो गया गांव में तो उसके लिए भी हम पेंशन की व्यवस्था करते हैं, विधवा है उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करते हैं। एक बहुत ही अच्छी हमारी जो योजना है भारत सरकार के, उसके योजना के क्रम में राज्य सरकार ने उसको लॉन्च कर रखा है, पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, वह है हमारी स्व सहायता समूह के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी महिलाएं हैं उनको सशक्त किया जाए। तो तमाम हमारे समूह बनते हैं और उस समूह की महिलाएं जो सरकार भी स्टार्टअप फंड और फिर अन्य भी बैंक के माध्यम से फंड के थ्रू जो है उनको मदद करती है, और उसमें बहुत सारी हमारी समूह की महिलाएं दीदियां जो है उसमें जुड़ के समूह बना के आत्मनिर्भर हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में जैसे अगर आपने जैसा पूछा है कि अभी किसी का, तो मुझे अभी याद आ रहा है कि अभी हम लोगों ने एक यहाँ पे कार्यशाला भी कराई थी, हमारी एक रंजना जय माँ दुर्गेश्वर सहायता समूह, उसमें उन्होंने जो है एक ग्रेडी से, पहले वो कुछ नहीं करती थी जैसे सामान्य दिनचर्या होती है एक महिला की ग्रामीण क्षेत्र में घर के काम, और उन्होंने एक समूह का गठन कराया, समूह में महिलाओं को जोड़ा और वो समूह आज एक ग्रेडी से हट के एक उद्यमशील, एक एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंतर्गत जो खुद लोगों को रोज़गार देने वाली वो बन चुकी हैं। उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो विभिन्न हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं, ऑफिसर्स अन्य जगहों पे जो स्टेशनरी इत्यादि की है, वो जेम पोर्टल जो भारत सरकार ने बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार के क्रम में, जिससे सामग्री खरीदने की बाध्यता है उसके बिना हम सीधे किसी से खरीद नहीं सकते, वो वहाँ पे भी पंजीकृत हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है आज उनकी मासिक आमदनी जो पहले कुछ नहीं थी वो जो है 20,000 से लेके 25,000 तक वो प्रतिमा जो है अपना अर्न कर रही है।
1: इसी के साथ सर ये जानना चाहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति पात्र है किसी भी योजना का और वो लाभ नहीं ले पा रहा है तो उसे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए?
4: देखिए, हमारे सरकार और शासन के विभिन्न माध्यम हैं, सूचना विभाग है, हमारे अखबार हैं, आपका रेडियो है, इनके माध्यम से हम लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जागरूकता के माध्यम से चलाने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने जून माह में एक वृहद जो है एक जन जागरूकता शिविर लगभग 15 दिन का चलाया था, ब्लॉकों में और मुख्यालय स्तर पे जगह जगह कई कई दिन तक कैंप लगाए थे। इसके अलावा भी हमारे जो पंचायत भवन हैं जो हर गाँव में हैं वहाँ पर भी विभिन्न हमारे शासकीय जो विभिन्न योजनाएँ हैं उनके योजनाओं के पात्रता, उनके लाभ के बारे में वहाँ पे हम लोगों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित करा रखा है। इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे कार्मिक हैं, सचिव हैं या अन्य विभागों के जो फील्ड स्तरीय कार्मिक हैं, वो भी जगह जगह जाके लोगों को इसके बारे में जागरूकता करके लोगों को योजनाओं को लाभ लेने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: सर, इसी के साथ जानना चाहते हैं कि जो हमारी विकास की योजनाएँ हैं इनका प्रभावी क्रियान्वयन और उसमें जो पारदर्शिता होती है वो सुनिश्चित करने के लिए जो हमारा जिला प्रशासन है वो क्या कदम उठाते हैं?
4: देखिए, अगर कोई योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं होती है तो निश्चित तौर से ये उस योजना को कहीं ना कहीं वो एक कमज़ोर करती है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जनपद में बहुत ही स्पष्ट निर्देश और क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए योजनाओं का हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि जो भी लाभार्थी होंगे उनका पहले जो उनकी पात्रता होगी उसके आधार पे उनकी जांच हो कि वास्तव में उसके लिए पात्र हैं। ऐसा तो नहीं कोई किसी वास्तविक कोई लाभार्थी का हक छीन के किसी अपात्र व्यक्ति को मिल रहा है, जो इसके पास ऑलरेडी मकान है उसको हम मकान दे रहे हैं। तो इसलिए फील्ड में सरकार ने भी इसके लिए जो ऐप बना रखा है, ऑलरेडी एक ऐप बना रखा है, उसमें फील्ड पर जाके जियो टैगिंग होती है, फिर उसको देखी फ़ोटो खींची जाती है कि हाँ वो कहाँ पे है, आवास है नहीं है, फिर उसके बाद उसको आगे हम ले जाके उसको शामिल करते हैं। इसी तरीके से अन्य भी जो योजनाएं हैं DBT के माध्यम से, और सीधे उसके कहीं बीच में बिचौलियों की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे खाते में पैसा उनके जाता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, और इसके अलावा जो शिकायत भी मिलती है तो शिकायतों को भी हम लोग निराकरण कराते हैं। अगर कोई लापरवाही बरती जाती है किसी के स्तर पर तो उनको दंडित करने का भी काम करते हैं।
1: सर इसी के साथ अंत में जनपद कानपुर देहात के जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो साथी हैं आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: इनके लिए मेरा यही एक संदेश है कि आप सरकार की योजनाओं से जुड़ के इसका लाभ लीजिए। आप अगर अच्छा आपको खेती करने का मन हो तो हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और इसके अलावा भी विभिन्न सरकारी अनुदान हैं, उनके माध्यम से आप अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। आप अगर उद्यमी बनना चाहते हैं तो हमारे यहाँ CM युवा जैसे तमाम स्कीम्स हैं जिसमें आप हम फैसिलिटेट करेंगे और आप अपना कोई भी उद्यम उसमें अपना सकते हैं। इसी तरह समाज कल्याण की विभिन्न योजनाएं हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया आप आगे आइए, जो भी हमारा फील्ड ऑफिस है या कहीं भी आप जिलाधिकारी के कार्यालय में आ सकते हैं, हमारे मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में आ सकते हैं, किसी भी योजना के बारे में आपको जानकारी शत प्रतिशत मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ, प्रशासन से जुड़ें, सरकार से अधिक अधिक जो योजनाएं हैं उनका लाभ आप तक पहुँचे। किसी भी तरीके से किसी मिडिल मैन बिचौलिए या कोई इस तरह से कहे कि हम आपका काम करा देंगे उसके प्रभाव में मत आए। सरकारी जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे कंट्रोल रूम नंबर हमारे यहाँ चलता है, जिलाधिकारी प्रतिदिन जनता दर्शन में बैठ के लोगों को सुनते हैं, मेरे स्तर पर भी सुनवाई होती है। तो ब्लॉकों में, तहसीलों में कहीं भी आप जा सकते हैं किससे अपनी समस्या का निराकरण कराने के लिए। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएँ हैं और जनपद कानपुर देहात में हम आपके साथ मिलकर ही इसके विकास को आगे बढ़ाएंगे, मेरी यही आप सभी के लिए संदेश रहे।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला हमारे श्रोताओं के लिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो जानकारी है हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगी और सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका वो लाभ भी लेंगे।
4: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपके श्रोताओं के साथ रूबरू हूं उसको, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बातों से साफ है कि विकास सिर्फ निर्माण कार्यों का नाम नहीं है, विकास का मतलब है लोगों के जीवन में सुविधा, अवसर और आत्मविश्वास बढ़ना।
1: और यही दूरदर्शी सोच आज उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति दे रही है, जहां आज की योजनाओं की नींव पर कल के आत्मनिर्भर और सशक्त प्रदेश की तस्वीर तैयार की जा रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का जोर है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचे।
1: गांव में सुविधाओं का विस्तार हो, लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले, जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का सहारा मिले, ये प्रयास उत्तर प्रदेश को नई दिशा दे रहे हैं।
0: यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान केवल आबादी या क्षेत्रफल से नहीं बल्कि तेजी से बदलती विकास की तस्वीर से भी हो रही है।
1: तो दोस्तों आज की कहानी हमें यही बताती है कि विकास तब तक सार्थक होता है जब तक उसका असर जमीन पर दिखाई दे
0: और जब उस बदलाव की गवाही खुद आम आदमी की आवाज दे।
1: उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्य प्रदेश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं
0: और इसी विश्वास के साथ प्रदेश आगे बढ़ रहा है विकास के रास्ते पर, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर और नए उत्तर प्रदेश के रास्ते पर।
1: तो श्रोताओं इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत।
5: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
6: पक्का बनारसी।
7: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे।
1: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
0: अरे बेटा,
1: ये क्या कर रहे हो अंकल?
0: अरे सुनो
1: गलत है ये।
0: अरे सुनो बेटा
1: अंकल।
2: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे बहन इतनी परेशान क्यों हो?
4: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
3: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
0: क्या कट मारा है, मजा ही आ गया।
5: अरे अरे अरे कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
6: अरे भाई और तेज भागा।
2: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras,
1: Pakka Banarsi, Pakka Banarsi.
2: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 एफएम से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।

0: पार्टी की भीड़ भाड़ के बाद रास्ते का ये सुनापन कितना अच्छा लग रहा।
1: ये आपके लिए छोटी सी भेंट है आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर। वहां सबके सामने देने में संकोच हो रहा था।
0: ये मेरे लिए सबसे अमूल्य भेंट है क्योंकि तुमने मुझे दी। माफ कीजिए मैं तुम कहेगा आपको।
1: अपने से छोटों को हमेशा तुम ही कहा जाता है और फिर तुम में जो अपनापन है वो आप में नहीं।
0: आज मैंने तुमसे एक नई बात सीखी है पूनम। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं है। जिससे भी अपनापन मिल जाए

0: अपनी आंखों से ना देखता तो कभी यकीन ना होता। यही कि आपको हंसना खेलना भी आता।
1: सपने जिद्दी, इसलिए खेलना पड़ा। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल के इस पागलपन में।
0: पागलपन? खुशी तो मन की तरंग होती है, उसे कोई रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता।
1: कमल बाबू, कविता से मन को बहलाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जिस मन को दुर्भाग्य ने और समाज के बंधनों ने कुचल डाला हो, उसे झूठा दिलासा देने से क्या फायदा।
0: आप मन की शक्ति को नहीं जानती। जिस मन में सच्ची भावना हो, लगन हो, वो एक बंधन को तोड़ सकता है।
1: और जिसके मन में न कोई उमंग हो, न कोई तरंग हो, जिसका जीवन एक कटी पतंग की तरह हो। आप ही के कविता के शब्द हैं।
0: वो मेरी अधूरी कविता है।
1: पूरी होकर भी कटी पतंग का भाग्य नहीं बदल सकती। जो एक बार अपनी डोर से कट गई, उसे दुख के थपेड़े न जाने कहां से कहां ले जाए। उसकी ना तो कोई दिशा है, ना कोई मंजिल।
0: फूल जोड़े में लगाते लगाते थैंक यू दिया।
1: मैं तो यूं ही देख रही थी।
0: फूल दो ही जगह शोभा देता है, एक भगवान के चरणों में, दूसरा स्त्री के जूड़े में।
1: हर स्त्री के जूड़े में नहीं।
0: एक बात पूछो पूनम।
1: पूछिए।
0: थोड़ी देर पहले तुम हंस खेल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हारा बीता हुआ जीवन इस झरने की तरह है, उमंग भरा।
1: लेकिन आज
0: इस झील की तरह है, जो ऊपर से शांत है लेकिन इसकी गहराई में न जाने कितने अरमान मचल रहे हैं। पूनम, दुनिया में झील की गहराइयां ही सब कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ है। जैसे जैसे ये फूल जो मुस्कुराहट देते हैं
1: और मुरझा भी जाते हैं,
0: जैसे ये शाम जो मस्ती लुटाती है
1: और रात के अंधेरे में खो जाती है।
0: पूनम, अगर तुम चाहो तो इस रात के अंधेरे से निकलकर आकाश के उजाले को छू सकती हो।
1: इसके लिए मजबूत हाथों के सहारे की जरूरत होती है।
0: पवित्र प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है।

वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.1

नीरज बाबू और माधवी मैडम और साथ में बड़े पापा बोले तो अजय बाबू और बड़ी मम्मी पिंकी मैडम और छोटे पापा डॉक्टर संजय और इनकी छोटी माँ पल्लवी मैडम रानीखेत से और इनके प्यारे छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन डॉक्टर प्रांजलि प्राज्वी प्रत्यूष अंश प्रकृति पूर्वी मेधा अथर्व और हेलो बनारस 91.2 FM की पूरी टीम और सुधांशु भी है साथ में जो अक्षत स्वरूप को बस यही कहना चाहते हैं।

जी हाँ जी हाँ, खूब ध्यान से पढ़ाई कीजिए। फिलहाल सुनते रहिए हेलो बनारस 91.2 FM। और हाँ लिसनर्स, अगर आप भी चाहते हैं अपनों को करना विश या देना चाहते हैं बधाइयां, तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 9839912912 पर। हम करेंगे आपके बिहाव पर उन्हें विश, जिसे सुनेगा पूरा विश्व, ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, विद आरजे सुधांशु, बोले तो यही है पक्का बनारस।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: और आज हमारी कहानी पहुंची है उस शहर में जिसकी सुबह गंगा की लहरों से होती है, जिसकी गलियों में सदियों की संस्कृति बसती है और जिसकी पहचान सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है।
0: जी हाँ, आज बात होगी काशी की, हमारे बनारस की, हमारे वाराणसी की।
1: एक ऐसा शहर जहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती दिखाई देती है। एक तरफ गंगा के घाट, मंदिरों की घंटियाँ और बनारसी संस्कृति की मिठास,
0: तो दूसरी तरफ सड़क, बिजली, आवास, रोजगार और जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से बदलती हुई तस्वीर।
1: क्योंकि विकास सिर्फ बड़े शहरों की ऊंची इमारतों का नाम नहीं,
0: वो विकास तब मायने रखता है जब उसकी रोशनी गांव के उस घर तक पहुंचे जहां एक माँ अपने बच्चे को बेहतर भविष्य के लिए दिन रात संघर्ष करती है।
1: और ऐसी ही एक कहानी है वाराणसी के छितौना गांव की।
0: छितौना की रहने वाली जड़ावती देवी, एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली जड़ावती देवी ने जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत देखी, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ।
1: सीमित साधन, घर की जिम्मेदारियां और बच्चों की पढ़ाई का सपना, जड़ावती देवी ने संघर्ष किया, मेहनत की और अपने बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश की।
0: क्योंकि माँ के लिए बच्चों की पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वो उसके सपनों की वो सीढ़ी होती है जिस पर चढ़कर उसके बच्चे उससे बेहतर जिंदगी जी सके।
1: और आज जब सरकार की योजनाओं का लाभ ऐसी जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचता है तो उनके संघर्ष में एक नया सहारा जुड़ता है।
0: जड़ावती देवी को आवास की सुविधा मिली, परिवार को राशन कार्ड की सुविधा मिली और मनरेगा का जॉब कार्ड भी मिला।
1: यानी कि सिर पर छत का सहारा, परिवार के लिए खाद्यान्न सुरक्षा का सहारा और रोजगार के अवसर से जुड़ने का एक माध्यम।
0: किसी बड़े शहर में बैठकर ये सुविधाएं शायद सिर्फ योजनाओं के नाम लगे,
1: लेकिन जड़ावती देवी जैसे परिवार के लिए यही सुविधाएं जिंदगी की मुश्किल राह को थोड़ा आसान बनाने वाली उम्मीद बनती है। दोस्तों, गांव की मिट्टी की खुशबू अलग ही होती है, पर फिलहाल आज हम गांव की मिट्टी की बात नहीं करने आए हैं, आज हम बात करने आए हैं विकास की। प्रदेश भर में जो विकास की लहर चल रही है उसकी छवि जो है बनारस में भी देखने को मिल रही है। बनारस और इससे संबंधित जो भी गांव है यहां पर भी विकास की जो छटा है वो बहुत अच्छे से छा रही है। और दोस्तों, विकास से जुड़ी बातें करने के लिए हम आपके साथ विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में तो जुड़ते ही हैं, और उसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं वाराणसी के एक गांव में एक लाभार्थी से बात करने। इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए।
2: हमारा नाम जड़ावती देवी है।
1: घर में कौन कौन है आपके?
2: हमारा बस माई है ना, एक लड़का बस, और हम हैं, तीन लोग बस हैं।
1: और क्या करते हैं आप?
2: बस खाना बनाते हैं, सरकारी काम मिला है बस वही।
1: और बेटा क्या करता है?
2: अभी कुछ नहीं।
1: तो जड़ावती जी, जो सरकार की विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं में से आपको किन किन परियोजनाओं का लाभ मिला है?
2: बस शौचालय, आवास, हाँ, आयुष्मान कार्ड बस बना है।
1: तो आपको, जैसे कि आपका घर नहीं था पहले, तो अब
2: पहले मड़ई था, इस पर ये जो बना है इस पर मड़ई था, अब उधर भी एक था, बस यही था
1: पहले, कच्चा घर।
2: हाँ, एकदम।
1: तो अब आवास के तहत जो आपको लाभ मिला है उससे अभी क्या क्या चीजें बनी है आपके घर में?
2: पहले बहुत दिक्कत हुआ था, बस छत ढला है, आरियारी ढला है, अभी अब जाके जब आवास मिला है तब तो ठीक थी, सब कुछ आरियारी दीवार हो गया है, छत भी बन गया है और सब बाकी है अभी करने के लिए।
1: पहले आप कच्चे घर में रहती थी। हाँ। तो अब क्या है कि अब आपके पास पक्का मकान हो गया है, टीन शेड लग गया है। हाँ। और जैसे कि आपने बकरी भी पाली है तो बकरी को भी रखने में उसमें आपको आसानी होती है।
2: हाँ।
1: और ये बताइए जड़ावती जी कि जैसे अब शौचालय बन गया है आपके यहाँ, तो शौचालय बनने से क्या फायदा है?
2: बहुत फायदा है, उतरे खुले में जाना पड़ता है, हमारी माँ को ज्यादा दिक्कत होती है,
1: बिल्कुल। और शौचालय बनने से क्या होता है कि शौचालय जो है किसी भी औरत के सम्मान या उनकी मर्यादा से भी संबंधित, उसको हम देखते हैं समाज में। लोग जो है खुले में शौच में जाते थे तो उससे क्या है कि कई सारी बीमारियों का भी खतरा रहता था, बीमारियों का भी खतरा रहता था। या वृद्ध जन है आपके घर में, एजेड है आपकी जो माता जी है, तो उनको भी अब सुविधा रहती है और आपको भी सुविधा रहती है।
2: पहले हम मड़ई में रहते थे, आवास मिल गया है, अब मकान बन गया है, शौचालय है, राशन कार्ड भी है। मोदी को और योगी को हमारा धन्यवाद।
0: आपने सुना, ये सिर्फ एक लाभार्थी की आवाज नहीं है,
1: ये उस माँ की आवाज है जिसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष किया और अब सरकारी योजनाओं के जरिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
0: लेकिन किसी योजना का लाभ जब गांव के परिवारों तक पहुंचता है तो उसके पीछे स्थानीय स्तर पर भी कई लोगों की भूमिका होती है।
1: तो आइए जानते हैं चितौना गाँव में विकास और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का क्या कहना है। दोस्तों, असली विकास वो होता है जो सबको लेके चले, यानी कि समावेश करके चले। और वाराणसी में भी जो विकास की लहर है पूरे उत्तर प्रदेश की, वो दिखाई दे रही है। और इसी लहर के चलते आज हम आ पहुंचे हैं वाराणसी के छितौना गांव में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास शख्स से जो कि इस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो चलिए अपनी बातचीत को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यहां पर क्या क्या कार्य हुए हैं विकास से संबंधित। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, आप अपना नाम बताइए।
3: आलोक यादव।
1: आलोक जी, इस ग्राम में जो है कई तरीके की विकास परियोजनाओं पे काम हो रहा होगा, तो अभी फिलहाल में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं और किस प्रकार से जो है उसका लाभ लोगों को दिया जा रहा है?
3: कच्चे रोडों को बनवाया जा रहा है, जो पहले से बने हुए रोडों उन पे कंक्रीट डाला जा रहा है, खड़पे लगाए जा रहे हैं और डमरू लगाया जा रहा है, और जहाँ जहाँ पानी लग रहा है उसका निस्तारण के लिए नालियाँ लगाई जा रही हैं, और जो इनके पास घर नहीं उनके लिए मुख्यमंत्री आवास, विधवा और विकलांगों के लिए ऑलरेडी मिल चुका है 12-13 लोगों को मेरे गांव में, और कुछ लोगों का जो अभी लिस्ट में नाम गया है, जीरो प्रॉपर्टी वालों का भी गया है जिनके पास एकदम ही कुछ नहीं है।
1: यदि कोई आवास के लिए अप्लाई करना चाहता है तो किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं या क्या उसका प्रोसेस होता है?
3: उसमें जैसे कि पात्र होना चाहिए, उसके पास 6 फीट से ऊपर पक्की दीवार नहीं होनी चाहिए, प्लस झोपड़ी टाइप रहना चाहिए, ये न कि वो झोपड़ी बनाकर दिखाए, झोपड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि 2-3 बार उसकी जियो टैगिंग होती है, वहाँ से अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं, तब उनको लाभार्थी को लाभ दिया जाता है।
1: कोई तरीके की ऐसे आपको समस्या भी देखने को मिलती है कि लोगों को अलॉट करने में या इस प्रोसेस में कोई तरीके की समस्या जो लोगों को आ रही हो या आपको आ रही हो अपने लेवल पर?
3: जैसे क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग दूसरे के घरों में रहते हैं और वो पक्का होता है, और तो उनसे ये मांगा जाता है कि आप जिसके मकान में रह रहे हैं या फिर आप अपने भाई के ही मकान में रह रहे हैं तो उनसे लिखित ले लें एक स्टाम्प पे कि वो मेरा घर है, मैं इनको भाड़े पे या उनके रहने के लिए दिया हूँ, तब मैं अलाट कर पाता हूँ, इसी वजह से उनको नहीं मिल पाता है।
1: मतलब कि दस्तावेजों से संबंधित जो है कुछ दिक्कतें ऐसी आती हैं। और अभी जो है कई तरीके की परियोजनाओं का लाभ जो है यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, हमने देखा है, जिसमें से कि मुख्य तौर से मुख्यमंत्री आवास योजना और राशन कार्ड की सुविधा और मनरेगा का जो जॉब कार्ड होता है उससे संबंधित भी चीजें हैं। तो लक्ष्य आपका एकदम साफ है कि बाकी जो आगे भी है, जो डेवलपमेंट की चीजें हैं या विकास कार्य आपका निरंतर चलता रहेगा, और ग्राउंड लेवल पर चीजें करने के लिए साथियों बहुत जरूरी होता है नेतृत्व। जब ऊपर बैठे लोगों का नेतृत्व हमें अच्छा मिलता है तभी विकास कार्य की जो छवि है वो ग्राउंड लेवल पर आपको दिख पाती है अच्छे तरीके से। और आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ
3: मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद बोलना चाहते हैं, इसी तरह करते रहें हमारे गांव का विकास, उनको मेरे तरफ से धन्यवाद।
0: ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की बातों से साफ है कि गांव के स्तर पर विकास की तस्वीर सिर्फ सुविधाओं के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं की पहुंच से भी जुड़ी है।
1: लेकिन छितौना की कहानी यही खत्म नहीं होती।
0: हमारी दूसरी कहानी है आशिमा बेगम की, 2 बच्चों की अम्मा और जीवन की कठिन परिस्थितियों के बीच अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालती हुई एक सशक्त महिला।

0: आशिमा बेगम के पति भी नहीं है। ऐसे में दो बच्चों की परवरिश और परिवार की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं रहा होगा।
1: लेकिन मुश्किल हालात के सामने खड़े होकर आगे बढ़ना ही तो जिंदगी का दूसरा नाम है।
0: आशिमा बेगम को भी आवास की सुविधा, राशन कार्ड और मनरेगा का जॉब कार्ड मिला।
1: यानी एक महिला, दो बच्चे और चुनौतियों से भरी हुई जिंदगी, लेकिन अब परिवार के पास एक सुरक्षित आवास, खाद्यान्न सुविधा से जुड़ाव और रोजगार के अवसर से जुड़ने का रास्ता है।
0: दोस्तों, विकास की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी है और वही लहर अब हमें देखने को मिल रही है वाराणसी और उसके आसपास के गांव में भी। और ऐसे ही कुछ विकास की बातें लेकर हम आ पहुंचे हैं वाराणसी के एक गांव में, जहां पर हम एक लाभार्थी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको किस तरीके के लाभ सरकार द्वारा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं गरीबों के कल्याण के लिए या इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए अपने लाभार्थी से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है?
2: आशिमा।
0: और क्या आपके गांव का नाम है?
2: चितौना।
0: क्या करती हैं आशिमा जी आप?
2: यही मजदूरी का काम, बच्चों के खेते हैं, आप तो जानते हैं गरीब है।
0: तो जैसे मजदूरी में जो मनरेगा आपका
2: गेहूं धान काट के,
0: तो मनरेगा के तहत आप अपना मजदूरी करती हैं। और परिवार में कौन कौन है?
2: यही दोनों बच्चे हैं।
0: अच्छा, तो स्कूल जाते हैं?
2: हाँ, स्कूल जाते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं दोनों।
0: कितने बड़े बच्चे हैं?
2: एक दिन पाँच में पढ़ते हैं और एक दिन दो में पढ़ते हैं और एक दिन पाँच साल का है। और
0: तो आशिमा जी, आप मुझे बताइए कि जैसे कि आपको जो है, हमें पता चला है कि आवास योजना के तहत लाभ मिला है, तो पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, पहले कैसे रहती थी जब मकान नहीं बना था? तो
2: इसलिए कि मैं पहले से कच्चे में रहती थी, तो कच्चे के बाद तब जो मजदूरी के बच्चों लोग बना के खिलाते हैं और जो अपने राशन बना के खिलाए हैं। अभी जो है
0: 18-19 साल से आप कच्चे घर में रहती थी। हाँ। फिर उसके बाद जो है, जब आपको आवास मिला है, तो उसके बाद जो पक्के मकान में आप रहने लगी?
2: दो साल हुआ था तो दो साल हुआ तो वो बना है।
0: आपका जो घर है, दो साल से आप उसमें रह रही हैं। आशिमा की कहानी हमें एक बात सिखाती है
1: कि जब किसी जरूरतमंद परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है, तो उसका असर सिर्फ कागज पर दर्ज नहीं होता है,
0: उसका असर घर की चौखट पर दिखाई देता है,
1: बच्चों के भविष्य में दिखाई देता है
0: और उस माँ के चेहरे पर दिखाई देता है जो कल की चिंता के बीच आज थोड़ा सुकून महसूस कर पाती है। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है,
1: ये आस्था है, संस्कृति है और विरासत है।
0: और अब तो ये विकास की नई कहानी भी लिख रहा है।
1: वाराणसी में विकास की तस्वीर आज कई स्तरों पर दिखाई देती है, बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लेकर कनेक्टिविटी, पर्यटन, रोजगार और जन कल्याण तक।
0: और इस विकास यात्रा में गांव और गरीब परिवार पीछे न छूटे, यही किसी भी जन कल्याणकारी व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विकास के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जरूरतमंद परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दे रही है।
0: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के रूप में वाराणसी में भी विकास की कई परियोजनाओं और योजनाओं ने शहर की तस्वीर को नई दिशा देने का काम किया है।
1: लेकिन बनारस की असली खूबसूरती सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट में नहीं है,
0: बल्कि उस छोटे से गांव में भी है जहां जड़ावती देवी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखती है,
1: जहां आशिमा बेगम अपने दो बच्चों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं,
0: और जहां सरकारी योजनाएं उनके संघर्ष में सहारा बनने का काम कर रही हैं।
1: यही है विकास का असली मतलब,
0: जब विकास शहर से गांव तक पहुंचे,
1: जब परियोजनाएं कागज से निकलकर जरूरतमंद परिवारों के घर तक पहुंचे,
0: जब एक माँ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ा और निश्चिंत हो सके,
1: और जब हर परिवार को लगे कि बदलते उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में उसकी भी हिस्सेदारी है।
0: गंगा की लहरों की तरह निरंतर आगे बढ़ती काशी,
1: अपनी विरासत को संजोते हुए विकास की नई राह पर बढ़ता वाराणसी,
0: और चितौना जैसे गांव में उम्मीद जगाती जन कल्याण की कहानियाँ,
1: यही है नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर।
0: एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां विकास की रफ्तार के साथ जन कल्याण को भी आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: तो ये थी बनारस के छितौना गांव से आई दो परिवारों की कहानी,
0: जड़ावती देवी और आशिमा बेगम की कहानी,
1: संघर्ष की कहानी,
0: हौसले की कहानी
1: और सरकारी योजनाओं से मिली नई उम्मीद की कहानी।
0: आप सुन रहे थे
3: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: बातें एंड चिल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर.
2: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त सुधांशु और चल रहा है हमारा शो मॉर्निंग लाउड स्पीकर ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर. और अभी हमने विश किया है अक्षत स्वरूप जी को, क्योंकि उनका है आज हैप्पी वाला बर्थडे. अक्षत बाबू को बर्थडे विश करने के लिए हमारे पास व्हाट्सएप आया हुआ है. इनके बाबा, दादी, चाचा, चाची और इनके मम्मी पापा नीरज बाबू, माधवी मैडम, साथ में इनके बड़े पापा अजय बाबू और मम्मा इनकी बड़ी वाली पिंकी मैडम, साथ में रानी खेत से इनके छोटे पापा डॉक्टर संजय, छोटी माँ पल्लवी मैडम और इनके प्यारे भाई बहन डॉक्टर प्रांजलि, प्राज्वी, पल, प्रत्यूष, अंश, प्रकृति, पूर्वी, मेधा और अथर्व भैया. इन लोगों ने अक्षत स्वरूप को विश करने के लिए हमें भेजा है व्हाट्सएप 9839912912 पर, और हमने कर दिया है विश अक्षत बाबू को इनके बिहाफ पर. अगर लिसनर्स आप भी चाहते हैं, आप लोगों को करना विश या देना चाहते हैं बधाइयां, तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 9839912912 पर. हम करेंगे आपके बिहाफ पर उन्हें विश, जिसे सुनेगा पूरा विश्व ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस विद आरजे सुधांशु. बोले तो यही है पक्का बनारस से.

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस. ये है

0: देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। मैं शहरे चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। सबकी ज़िंदगी बदल गई, एक नए सिरे से ढल गई। किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं, किसी को दोस्तों की ज़रूरत नहीं। सारे यार गुम हो गए, तुम से तुम और तुम से आप हो गए। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस के दोस्त, फिर लौट के दोस्ती के ज़माने नहीं आते। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: सी बातें एंड चिल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर.
2: 91.2 FM. हेलो बनारस, पक्का बनारसी.

0: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
1: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
0: अरे बेटा,
1: ये क्या कर रहे हो अंकल?
0: अरे सुनो,
1: गलत है ये।
0: अरे सुनो बेटा।
1: अंकल,
2: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
3: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
4: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
5: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
4: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
6: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।
7: यूपी को मिली ग्लोबल पहचान, निवेश का बना पसंदीदा स्थान। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सिंगापुर और जापान यात्रा से यूपी में वैश्विक निवेश का बड़ा द्वार खुल गया है।
8: सिंगापुर एवं जापान यात्रा में रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए, साथ ही 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
7: ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स का हब बनने की ओर अग्रसर यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा से रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
9: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
10: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
9: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
4: क्या कट मारा है, मजा ही आ गया।
11: अरे अरे अरे, कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
12: अरे भाई और तेज भागा।
2: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।

0: सॉन्ग, इसकी है वाइब स्ट्रॉन्ग। अब सुनिए इवनिंग गपशप आरजे अमीशा के साथ मंडे टू फ्राइडे शाम 6 से 9 ओनली ऑन 91.2 एफएम हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: इवनिंग गपशप
2: 91.2 एफएम हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
3: पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM. Hello, Banaras.
5: Hello, Banaras.

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।
2: 91.2 FM, हेलो बनारस,
4: हेलो बनारस।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi. Pakka Banarsi.
1: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
2: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
3: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
2: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
3: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
2: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
5: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
4: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
6: बेटा, काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
7: अंकल, आती हूँ अंकल। अरे
6: अरे बेटा,
7: ये क्या कर रहे हो?
6: अरे
7: अंकल,
6: सुनो
7: गलत
6: तो,
7: है ये।
6: अरे सुनो बेटा,
7: अंकल।
8: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
9: बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
10: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
9: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
11: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
12: 91.2 FM हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी। व्हाट अ बिजी डे।
13: डॉक्टर साहब, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ लेकिन मेरा मूड ही नहीं बनता, मैं क्या करूँ?
12: ओह, दैट इज अ वेरी कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन। देखो यार, तुम इमरान हाशमी के गाने देखा करो, फिर तुम्हारा भी मूड मेरी तरह बन जाएगा भाई। 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कॉन्फर्मेशन करता है भाई।

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: हेलो बनारस।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
3: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु, और हर बार की तरह आपकी सेहत सही रहे इसके लिए हम मिलते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी खास ऐसे व्यक्ति और ऐसी पर्सनालिटी से हम मिलवाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारी रहे सेहत सही और मिले हमें लाभ कई। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसी क्रम में हम आज मिलते हैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्वांचल की सुप्रसिद्ध। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो बनारस 91.2 FM पर।
4: नमस्ते सुधांशु जी।
3: तो हमारा पहला सवाल आज का यही है और विषय भी हमारा यही है कि जो प्रसूति के बाद डॉक्टर मनीषा, सवाल हमारा यही है कि डिलीवरी के बाद खून पर
4: खून की कमी पर ध्यान देना क्यों जरूरी है?
3: डॉक्टर मनीषा हमारा सवाल यही है कि जब डिलीवरी हो जाती है, जब किसी स्त्री को बच्चा हो गया है, वो माँ बन चुकी है, तो उसके बाद खून की कमी पर ध्यान देना क्यों जरूरी है?
4: देखिए सुधांशु जी, सिर्फ डिलीवरी के बाद ही नहीं, जब पेशेंट कोई भी हमारी बहन या माताजी कोई भी प्रेग्नेंट होती है तो उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी खून की कमी का उतना ही ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन कर रखेगी, खून की कमी नहीं होने देगी, तो आफ्टर डिलीवरी भी उसको खून की कमी नहीं होगी। लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको आफ्टर डिलीवरी भी खून की कमी हो जाती है। उसका वन ऑफ द मोस्ट कॉज होता है कि अगर ड्यूरिंग डिलीवरी उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है तो उसकी वजह से उसको काफ़ी खून की कमी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखेंगे तो उस कमी को पूरा किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा ठीक करने का एक उपाय है कि आप अच्छा न्यूट्रिशियस खाना लीजिए, प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर की गाइडेंस में रहिए, बराबर बच्चे को अपना स्तनपान कराइए, और पानी का इंटेक भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको विटामिन सी है न्यूट्रिशियस। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन डाइट में जैसे रेड मीट आप ले सकते हो, वो अच्छा होता है। लिवर कलेजी जिसको बोलते हैं वो आप ले सकते हो, वो अच्छा हो सकता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप बहुत सारे बीन्स हैं, प्रोटीन है, ये भी सब बाइंडिंग में काम करते हैं। और हमारे देश में या मैं आई डोंट नो लेकिन बनारस में है कि आफ्टर डिलीवरी लोग प्रसूति वाली महिला को पानी नहीं पीने देता, कहते पानी नहीं पियो पेट निकल जाएगा, जबकि वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोई कमी नहीं होगी, ना खून की कमी होगी, ना किसी न्यूट्रिशन।
3: अच्छा डॉक्टर मनीषा, अभी जैसा कि आपने कहा न्यूट्रिशन वाले फूड लेने चाहिए, तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं और दर्शकों को ये बताएं कि अगर हम वेजिटेरियन की बात करें तो किस तरह से फूड हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
4: देखिए वेजिटेरियन हैं आप तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे आप ये लीफी वेजिटेबल्स हैं, मेथी है, पालक है, ये आप अच्छे सूप की फॉर्म में ले सकते हो, सब्जी की फॉर्म में ले सकते हो, उसको आप किसी भी तरह से ले सकते हो, और आप जितने भी बीन्स हैं वो आप ले सकते हो, और जैसे चना है या ये मोठ की दाल है उसको रात को उसको अंकुरित करके आप ले सकते हो, ये सब चीज़ बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने बताया भी रेड मीट ले सकते हो, लिवर कलेजी जिसको बोलते हैं वो बहुत हेल्पफुल होता है, और सी फूड में आयरन तो नहीं होता लेकिन वो इजी डाइजेस्टिव होता है तो आप उसको भी ले सकते हो, तो वो आप आराम से डाइजेस्ट भी कर सकते हो उसको। आपको बराबर एक तो देखिए हमको हमारी पेशेंट्स को ना बताना ज़रूरी है कि बहुत से पेशेंट्स को पता नहीं होता आयरन और कैल्शियम एक साथ ले लेते हैं, जैसे कि आयरन और कैल्शियम दोनों का एब्जॉर्प्शन किसी का भी नहीं हो पाता है, तो हमको पेशेंट को हमेशा बताना चाहिए कि आयरन आपको मॉर्निंग में लेना, कैल्शियम इवनिंग में लेना, या वाइस वर्सा जैसे भी उनको कंफर्टेबल हो वो ले सकते हैं। दूध के साथ नहीं लेना है कोई भी आयरन तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। विटामिन सी ज़्यादा लेना है, विटामिन सी इसलिए क्योंकि वो आयरन एब्जॉर्प्शन में काम करता है, फ़ायदा करता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। विटामिन सी किस में होता है? जितने भी आप आपके खट्टे फल नींबू है, आप हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, संतरा है, कीवी है, यह सब आप ले सकते हो, सबसे एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, ये सब अच्छी चीज है।
3: वैसे हम ये चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं और दर्शकों को जो कैल्शियम और आयरन वाली बात बताई है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिसको भी देखा है उस स्टेज पर जाते हो, जो भी फैमिली वेयर में जाते हैं, तो वो कैल्शियम और आयरन पे बहुत जोर देते हैं, तो उसको जो खाने का आपने तरीका बताया है, उसकी दवाइयों को, वो एक बार हमारे श्रोताओं और दर्शकों को फिर से बता दें।
4: देखिए, कभी भी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम, कोई भी आयरन, कभी भी मेडिसिन कोई भी खाने के साथ नहीं लेना चाहिए, और कोई भी मेडिसिन कभी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, और आयरन और कैल्शियम तो कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए, इससे दोनों में से किसी चीज का एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में होता ही नहीं है। तो आपको, जैसे आप मॉर्निंग में आयरन ले रहे हो, तो कैल्शियम आपको इवनिंग में लेना चाहिए, तो काफी गैपिंग होनी चाहिए, जिससे कि दोनों का एब्जॉर्प्शन अच्छा रह सके।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों और श्रोताओं के साथ शेयर की लिए।
4: धन्यवाद सुधांशु जी। थैंक।
3: तो अभी हम पूर्वांचल की सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मनीषा गुप्ता मैडम से हम लेते हैं इजाजत, और आप अभी देख रहे हैं सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के इस अंक में प्रसूताओं को, यानी कि जो माताएं हैं, फैमिली, जो महिलाएं डिलीवरी से बाहर आ रही हैं, उन्हें खून की कमी पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है, इसी विषय पर हम बात कर रहे थे डॉक्टर मनीषा गुप्ता से, जो पूर्वांचल की प्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। अभी के कार्यक्रम में हम लेते हैं आपसे विदा, अगली बार हम होंगे सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के एक नई कड़ी में। तब तक सुनते और देखते रहिए हेलो बनारस 91.2 एफएम। हम बोले तो विद आरजे सुधांशु एंड डॉक्टर मनीषा, यही है पक्का बनारसी।
4: नमस्ते।

0: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि गांव की गलियों, खेतों, घरों और लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, और आज की कहानी है कानपुर देहात की। एक ऐसा जिला जिसकी पहचान गाँव की मिट्टी, खेती किसानी, मेहनत कश लोगों और बदलते ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। यहाँ की तस्वीर में परंपरा भी है और विकास की नई उम्मीद भी।
0: और यही बदलाव आज हमारी कहानी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का जोर इस बात पर है कि विकास की रफ्तार गांव तक पहुंचे और हर क्षेत्र को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: सड़क, रोजगार, स्वरोजगार, बुनियादी सुविधाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं, यानी विकास की ऐसी तस्वीर जिसमें उत्तर प्रदेश के गांव भी नए उत्तर प्रदेश की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े।
0: यानी आज बात होगी विकास की कहानी आम लोगों की जुबानी।
1: तो चलिए चलते हैं कानपुर देहात के उस ग्रामीण परिवेश की ओर जहां बदलाव को महसूस किया जा सकता है, और सुनते हैं वहां के लोगों की अपनी कहानी।
0: उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि विकास की योजनाएं कागजों तक सीमित ना रहें, बल्कि उनका लाभ गांव, घर, परिवार तक पहुंचे। सड़क हो या रोजगार हो या स्वरोजगार, हर क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ने का अवसर भी मिले।
1: और यही सबसे अच्छी बात है कि जब किसी योजना का लाभ सीधे किसी परिवार तक पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उससे पूरा परिवार मजबूत होता है और आत्मनिर्भरता की राह आसान होती है।
0: तो अब सुनते हैं उस व्यक्ति की आवाज जिसने खुद इस बदलाव को महसूस किया है।
2: श्याम सुंदर कमल, ग्राम बखरिया, झारखंड सिवली से रहने वाला हूँ। मैं कानपुर में मिस्त्री टाइल पत्थर का काम करता था। अटेंडर एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया, बुखार में बच्चे अच्छे सब घबरा गए मेरे, तो उन्होंने मुझे लाद के डॉक्टर के यहाँ ले गए। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, तो हम हृदय रोग संस्थान में एडमिट हो गए। वहाँ करीब जहाँ पे डॉक्टर ने जांच की तो उसमें उन्होंने बताया कि अटैक की बीमारी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कम से कम खुद नहीं तो कम से कम 3-4 लाख रुपया लगेगा। हम दो तीन में पड़े रहे वहाँ पे, कुछ इलाज चलता रहा, जो घर का था सब खत्म हो गया, लाज गल्ला जो था वो भी सब बेच दिया। इसके बाद में मेरे पिताजी एक दिन देखने गए तो उन्होंने मुझे कागज़ दिखाया, तो वो कागज़ मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये तो आयुष्मान कार्ड वाला है, इससे आपका इलाज हो सकता है। तो उसी से मेरा फिर वहाँ इलाज शुरू हुआ, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर उसमें फिर मशीन पड़ी। तब से आज तक मेरा वहीं से इलाज भी चल रहा है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो उन्होंने मेरी वक्त पे बुरे वक्त पे उन्होंने साथ दिया मेरा, मैं उनका दिल से आभारी हूँ।
1: सुना आपने, यही तो विकास की असली तस्वीर है। जब सरकारी प्रयास लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं तो योजनाओं का उद्देश्य भी सार्थक होता है।
0: और उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। गांव हो या शहर, किसान हो या छोटा कारोबारी, हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
0: लेकिन हरी, ये बताइए, किसी योजना की सफलता को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: वो तो लाभार्थियों से पूछिए।
0: बिल्कुल सही। तो चलिए एक और लाभार्थी से जानते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया और सरकारी मदद ने उनके लिए किस तरह की नई संभावनाएं खोली।
3: मेरा नाम वंदना पाल है, मैं ग्राम तातमो खबरा की निवासी हूँ। मेरी एजुकेशन एमए है। मेरी शादी 2016 में हुई थी। 16 में शादी होने के बाद हम घर में ही रहते थे, जैसे घर का काम करते थे और हमें बाहर आना जाना नहीं होता था। 2022 में हमारे यहाँ ब्लॉक से कुछ दीदियाँ आईं जिन्होंने हमें समूह के बारे में जानकारी दी। हमने भी अपना समूह में जुड़ने का निर्णय ले लिया, जिसमें हम अध्यक्ष पद पे थे। मेरे समूह का नाम सागर महिला स्वयं सहायता समूह है। और क्या कहते हैं, 2 महीने बाद जब हमें समूह में जुड़ने के बाद 2 महीने बाद पता चला कि ब्लॉक में कुछ वैकेंसियाँ निकली हैं, जैसे समूह सखी और बैंक सखी ये सब निकली थी, जिसमें हमने बैंक सखी के पद पे फॉर्म डाला था, जिसमें हमारा 60 दिन की ट्रेनिंग आर शेट्टी अकबरपुर में हुई थी। उसके बाद हमको बैंक में 2022 अगस्त में हमको ज्वाइनिंग मिल गई थी। उसके बाद हम बैंक में आना जाना शुरू किया, वहाँ पे हम बैंक में रह के समूह की दीदियाँ, जैसे नए पंचायतों में खाते खुलते थे बनते थे, उसमें हम उनके खाते खुलवाते थे, जब 6 महीने पूरे हो जाते थे उनका लोन पास करवाते हैं। ऐसे चलते चलते हम ब्लॉक में एक दिन गए तो हमें वहाँ पे पता चला, मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना के बारे में पता चला, जिसमें हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमारा वो लोन भी पास हो गया और हमें 5 लाख का लोन मिला, जिसमें हमने किराने की दुकान की। ये पैसा हमको मतलब हाथ में नहीं मिला, इसके लिए जो हम सामान लाए उसके लिए मिला था। हम मतलब समूह में जुड़ के हमने काफ़ी कुछ किया, उसके पहले तो हम गरीब में रहते थे, अब हम भी अपना कुछ अपना खर्च निकाल सकते हैं अपने पैरों पे खड़े होके। हम तो सबसे यही कहते हैं सभी दीदियों से कि समूह में जुड़िए और समूह से लाभ उठाइए। मुख्यमंत्री युवा उद्यम के बारे में अगर हम भी नहीं जान पाते तो हम भी घर पे होते और बस वही थोड़ा समूह का काम करते होते। जब हमको इसके बारे में जानकारी मिली तो हमने ये अपना लोन करवाया और हम इसमें आगे बढ़े। हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी योजना ये शुरू की है, जिससे हम लोगों को, हम गृहिणियों को भी इसमें आगे बढ़ने के लिए लाभ मिल सकता है। जब ये हमारे यहाँ मेरे पास ये किराने की दुकान नहीं थी तो मेरे घर का खर्च मेरे पति ही चलाते थे, अब हम उनका हाथ बटा सकते हैं और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और हमारा जीवन कुशल पूर्वक है और शांति से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं।
1: वाह, इनकी बातों में सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि आगे बढ़ने का भरोसा भी सुनाई देता है।
0: और यही भरोसा उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा की ताकत है। सरकार की योजनाएं तभी प्रभावी बनती हैं जब उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और वो लाभ उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए।
1: अब इस पूरे विकास कार्य से जुड़े अधिकारी से जानते हैं कि सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ रही है।
4: मैं विधान जायसवाल और मैं इस जनपद कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ पिछले लगभग 6 महीने से।
1: सबसे पहले सर श्रोताओं की ओर से जानना चाहेंगे कि जनपद कानपुर देहात में वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी प्रभावी योजनाएं संचालित हो रही है।
4: देखिए, शासन की विभिन्न योजनाएं हमारे जनपद कानपुर देहात में भी संचालित हैं और मुझे खुशी है कि विभिन्न जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं में लोगों को लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से हम देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगजन पेंशन, गरीब बच्चियों के जिनकी शादी नहीं हो जाती उनके लिए हमारे समाज कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, शादी अनुदान योजना जिसमें उनको कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिसमें किसी अनटाइमली डेथ पे जो है कुछ सरकार जो है मदद करती है, इसी तरह पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है पूर्व दशमोत्तर, किसानों के लिए उनके सम्मान राशि के रूप में भारत सरकार के योजना के अंतर्गत किसान सम्मान निधि देते हैं, फसलों के लिए अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दैवीय आपदा राहत योजना, इसी तरह DBT के माध्यम से अगर पशुओं को भी आप रख रहे हैं तो उसमें भी तमाम योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत जो है लाभ पहुंचा रहे हैं। हर घर में नल हो, जल हो, उसके लिए हमारी ग्रामीण जो हमारी पाइपलाइन सप्लाई है उसके अंतर्गत है। इसके अलावा भी हमारी एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो पहले आप लोग जिसको नरेगा के नाम से जानते होंगे, वो भी जो है BBG राम जी के नाम से और भी बेहतर ढंग से जनपद में संचालित कराई जा रही है।
1: जो भी योजनाएं आपने बताई इनका जो हमारे खासकर ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको प्रत्यक्ष कैसे लाभ मिल पा रहा है?
4: हमारी योजनाएं जो जमीनी स्तर पे जब लागू होती हैं उसका सीधा सीधा इसमें जो प्रभाव है और उसका लाभ है उस गरीब व्यक्तियों को मिलता है, जिसका असर जो है ग्रामीण जीवन पे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे

0: बहुत ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। आप देखेंगे हमारे जो भी गांव हैं, गांव में गरीब लोग रहते हैं, उनके पास यदि उनकी खुद की ज़मीन है तो उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना, जैसी भी उनकी पात्रता हो, उनके अंतर्गत उनको पक्का मकान हम बना रहे हैं। लाखों पक्के मकान हम लोगों ने बना लिया है अभी तक, और आगे भी जैसे जैसे इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते जाते हैं वैसे वैसे इनको हम नए पक्के मकान बनाते हैं। इसी तरीके से बीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत 125 दिन का, जो पहले नरेगा के अंतर्गत 100 दिन था, उसको सरकार ने 125 दिन कर दिया। जो मजदूरी है वो भी बढ़ा के 300 रुपये के करीब कर दी है। तो उस सारी चीज़ें जो है, रूरल जो हमारी इकॉनमी है, रूरल जो हमारे लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, उनको उनकी आय और उनके जीवन को बेहतर ढंग से और आगे बढ़ाने के लिए ही लागू की जा रही हैं।
1: सर, इसी के साथ क्या कोई ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सरकार की किसी योजना का लाभ लिया हो और वो आज आगे सकारात्मक बढ़ रहा हो?
0: ऐसे तो आप देखेंगे तो कानपुर देहात में अनगिनत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे
1: जी।
0: सरकार हमारी जो है और जो हमारे विभाग हैं जिले स्तर पर, उनमें आप देखेंगे हम निराश्रित, जैसे अगर कोई वृद्ध हो गया गांव में तो उसके लिए भी हम पेंशन की व्यवस्था करते हैं, विधवा है उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करते हैं। एक बहुत ही अच्छी हमारी जो योजना है भारत सरकार के, उसके योजना के क्रम में राज्य सरकार ने उसको लॉन्च कर रखा है, पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, वह है हमारी स्व सहायता समूह के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी महिलाएँ हैं उनको सशक्त किया जाना। तो तमाम हमारे समूह बनते हैं और उस समूह की महिलाएं, जो सरकार भी स्टार्टअप फंड और फिर अन्य भी बैंक के माध्यम से फंड के थ्रू जो है उनको मदद करती है, और उसमें बहुत सारी हमारी समूह की महिलाएं, दीदियां जो है उसमें जुड़ के समूह बना के आत्मनिर्भर हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में जैसे अगर आपने जैसा पूछा है कि अभी किसी का, तो मुझे अभी याद आ रहा है कि अभी हम लोगों ने एक यहाँ पर कार्यशाला भी कराई थी, हमारी एक रंजना जय माँ दुर्गे स्व सहायता समूह, उसमें उन्होंने जो है एक गृहिणी से, पहले वो कुछ नहीं करती थी जैसे सामान्य दिनचर्या होती है एक महिला की ग्रामीण क्षेत्र में घर के काम, और उन्होंने एक समूह का गठन कराया, समूह में महिलाओं को जोड़ा और वो समूह आज एक गृहिणी से हट के एक उद्यमशील, एक एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंतर्गत जो खुद लोगों को रोजगार देने वाली वो बन चुकी हैं। उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो विभिन्न हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं, ऑफिसर्स, अन्य जगहों पे जो स्टेशनरी इत्यादि की है, वो जेम पोर्टल जो भारत सरकार ने बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार के क्रम में, जिससे सामग्री खरीदने की बाध्यता है उसके बिना हम सीधे किसी से खरीद नहीं सकते, वो वहाँ पे भी पंजीकृत हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है आज उनकी मासिक आमदनी जो पहले कुछ नहीं थी वो जो है 20,000 से लेके 25,000 तक वो प्रतिमा जो है अपना अर्न कर रही है।
1: इसी के साथ सर ये जानना चाहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति पात्र है किसी भी योजना का और वो लाभ नहीं ले पा रहा है तो उसे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए?
0: देखिए, हमारे सरकार और शासन के विभिन्न माध्यम हैं, सूचना विभाग है, हमारे अखबार हैं, आपका रेडियो है, इनके माध्यम से हम लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जागरूकता के माध्यम से चलाने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने जून माह में एक वृहद जो है एक जन जागरूकता शिविर लगभग 15 दिन का चलाया था, ब्लॉकों में और मुख्यालय स्तर पे जगह जगह कई कई दिन तक कैंप लगाए थे। इसके अलावा भी हमारे जो पंचायत भवन हैं जो हर गाँव में हैं, वहाँ पर भी विभिन्न हमारे शासकीय जो विभिन्न योजनाएँ हैं उनके योजनाओं के पात्रता, उनके लाभ के बारे में वहाँ पे हम लोगों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित करा रखा है। इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे कार्मिक हैं, सचिव हैं या अन्य विभागों के जो फील्ड स्तरीय कार्मिक हैं, वो भी जगह जगह जाके लोगों को इसके बारे में जागरूकता करके लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: सर, इसी के साथ जानना चाहते हैं कि जो हमारी विकास की योजनाएँ हैं इनका प्रभावी क्रियान्वयन और उसमें जो पारदर्शिता होती है वो सुनिश्चित करने के लिए जो हमारा जिला प्रशासन है वो क्या कदम उठाता है?
0: देखिए, अगर कोई योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं होती है तो निश्चित तौर से ये उस योजना को कहीं ना कहीं वो एक कमज़ोर करती है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जनपद में बहुत ही स्पष्ट निर्देश और क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए योजनाओं का हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि जो भी लाभार्थी होंगे उनका पहले जो उनकी पात्रता होगी उसके आधार पे उनकी जांच हो कि वास्तव में उसके लिए पात्र हैं। ऐसा तो नहीं कोई किसी वास्तविक कोई लाभार्थी का हक छीन के किसी अपात्र व्यक्ति को मिल रहा है जो इसके पास ऑलरेडी मकान है उसको हम मकान दे रहे हैं। तो इसलिए फील्ड में सरकार ने भी इसके लिए जो ऐप बना रखा है, ऑलरेडी एक ऐप बना रखा है, उसमें फील्ड पर जाके जो टैगिंग होती है फिर उसको देखी फ़ोटो खींची जाती है कि हाँ वो कहाँ पे है, आवास है नहीं है, फिर उसके बाद उसको आगे हम ले जाके उसको शामिल करते हैं। इसी तरीके से अन्य भी जो योजनाएं हैं DBT के माध्यम से, सीधे उसके कहीं बीच में बिचौलियों की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे खाते में पैसा उनके जाता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो शिकायत भी मिलती है तो शिकायतों को भी हम लोग निराकरण कराते हैं। अगर कोई लापरवाही बरती जाती है किसी के स्तर पर तो उनको दंडित करने का भी काम करते हैं।
1: सर, इसी के साथ अंत में जनपद कानपुर देहात के जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो साथी हैं आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: इनके लिए मेरा यही एक संदेश है कि आप सरकार की योजनाओं से जुड़ के इसका लाभ लीजिए। आप अगर अच्छा आपको खेती करने का मन हो तो हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और इसके अलावा भी विभिन्न सरकारी अनुदान हैं, उनके माध्यम से आप अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। आप अगर उद्यमी बनना चाहते हैं तो हमारे यहाँ CM युवा जैसे तमाम स्कीम्स हैं जिसमें आप हम फैसिलिटेट करेंगे और आप अपना कोई भी उद्यम उसमें अपना सकते हैं। इसी तरह समाज कल्याण की विभिन्न योजनाएं हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया आप आगे आइए, जो भी हमारा फील्ड ऑफिस है या कहीं भी आप जिलाधिकारी के कार्यालय में आ सकते हैं, हमारे मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में आ सकते हैं, किसी भी योजना के बारे में आपको जानकारी शत प्रतिशत मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ, प्रशासन से जुड़ें, सरकार से अधिक जो योजनाएं हैं उनका लाभ आप तक पहुँचे। किसी भी तरीके से किसी मिडिल मैन बिचौलिए या कोई इस तरह से कहे कि हम आपका काम करा देंगे उसके प्रभाव में मत आए। सरकारी जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे कंट्रोल रूम नंबर हमारे यहाँ चलता है, जिलाधिकारी प्रतिदिन जनता दर्शन में बैठ के लोगों को सुनते हैं, मेरे स्तर पर भी सुनवाई होती है। तो ब्लॉकों में, तहसीलों में कहीं भी आप जा सकते हैं किससे अपनी समस्या का निराकरण कराने के लिए। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएँ हैं और जनपद कानपुर देहात में हम आपके साथ मिलकर ही इसके विकास को आगे बढ़ाएंगे, मेरी यही आप सभी के लिए संदेश रहेगा।
1: सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्तम समय से समय निकाला हमारे श्रोताओं के लिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो जानकारी है हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगी और सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका वो लाभ भी लेंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपके श्रोताओं के साथ रूबरू हूं उसको, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बातों से साफ है कि विकास सिर्फ निर्माण कार्यों का नाम नहीं है, विकास का मतलब है लोगों के जीवन में सुविधा, अवसर और आत्मविश्वास बढ़ना।
3: और यही दूरदर्शी सोच आज उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति दे रही है, जहां आज की योजनाओं की नींव पर कल के आत्मनिर्भर और सशक्त प्रदेश की तस्वीर तैयार की जा रही है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का जोर है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचे।
3: गांव में सुविधाओं का विस्तार हो, लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले, जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का सहारा मिले, ये प्रयास उत्तर प्रदेश को नई दिशा दे रहे हैं।
2: यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान केवल आबादी या क्षेत्रफल से नहीं बल्कि तेजी से बदलती विकास की तस्वीर से भी हो रही है।
3: तो दोस्तों, आज की कहानी हमें यही बताती है कि विकास तब तक सार्थक होता है जब तक उसका असर जमीन पर दिखाई दे
2: और जब उस बदलाव की गवाही खुद आम आदमी की आवाज दे।
3: उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्य प्रदेश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं
2: और इसी विश्वास के साथ प्रदेश आगे बढ़ रहा है विकास के रास्ते पर, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर और नए उत्तर प्रदेश के रास्ते पर।
3: तो श्रोताओं, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
5: पक्का बनारसी। बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: कुछ कहोगे नहीं?
1: वो सब कुछ जो मुझे नहीं कहना चाहिए था मैं तुमसे हमेशा कहता रहा, और अब जब कुछ कहना चाहता हूँ तो कुछ कहने पा रहा हूँ।
0: ऐसा मत कहो।
1: कितना बदनसीब हूँ मैं, जब तुम घर में थी तो मैं बाहर के बना रहा।
0: ऐसा मत कहो।
1: कितना बदनसीब हूँ मैं, जब तुम घर में थी तो मैं बाहर के बना रहा, और अब जब तुम्हें घर का बना हूँ तुम यहाँ जा रही।
0: सिर्फ तुम ही कहने वाले हो जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए।

0: हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए।
1: प्रस्तुत पंक्तियां दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है।
2: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
3: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी।
2: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
4: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।
5: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
6: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
5: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
6: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
5: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
7: अरे बहन इतनी परेशान क्यों हो?
8: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
7: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। शुरू हो चुका है हमारा शो पर्दे के पीछे, ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में हमारी बात होगी फिर।

बिल्कुल ठीक समझा आपने। आशिकी के बारे में मैं एक बात आपको ये बता दूं कि ये पहले फिल्म नहीं बन रही थी, बल्कि चाहत नाम से एक एल्बम के रूप में शुरुआत हुई थी, जिसकी सिंगर अनुराधा पौडवाल ने संगीतकार नदीम शवन को टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार जी से मिलवाया था, जो एक नया रोमांटिक एल्बम बनाना चाहते थे। जब महेश भट्ट ने ये गाने सुने तो उन्होंने गुलशन कुमार जी को एक सजेशन दिया, इसे गाने की एल्बम के बजाय एक फिल्म बनाते हैं। लेकिन गुलशन कुमार जी कभी नहीं चाहते थे कि चाहत एल्बम की जगह आशिकी फिल्म का निर्माण हो, क्योंकि उन्हें ये एक बिल्कुल पाकिस्तानी एल्बम जैसा लगता था। ऐसे में महेश भट्ट जी ने एक पेपर लिया और गुलशन कुमार के आगे एक कागज पे लिख दिया कि अगर ये फिल्म नहीं चलेगी तो मैं जीवन भर डायरेक्शन नहीं करूंगा। इसके गानों से ये बहुत सेटिस्फाइड थे। बातें हमारी चलती रहेंगी आज सिर्फ आशिकी के बारे में, ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। पर्दे के पीछे में विद आर्य सुधांशु, भैया यही है पक्का बनारसी।

0: से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। आज पर्दे के पीछे में हम बात कर रहे हैं फिल्म आशिकी के बारे में। इसके डायरेक्टर महेश भट्ट ने इस फिल्म के लिए नए चेहरों की तलाश की।

राहुल रॉय को महेश भट्ट ने एक मैगजीन में देख करके कास्ट किया था, जिसके लिए उन्हें 2,30,000 रुपए मिले। और अनु अग्रवाल की जगह पे वो अपनी बेटी पूजा भट्ट को लेना चाहते थे, लेकिन पूजा ने एक्टिंग के लिए हामी नहीं भरी। और जब फिल्म बन के तैयार हुई तो गुलशन कुमार ने जब उसका प्रीमियर देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो फिल्म की हीरो हीरोइन मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये पिक्चर बंद करो, ये पिक्चर नहीं रिलीज होगी। एक तो पहले वो चाहते नहीं थे कि इस पर फिल्म बनाई जाए, दूसरे जब उन्होंने देखा कि हीरो हीरोइन उन्हें नहीं पसंद आ रहे हैं, तब महेश भट्ट ने उन्हें समझाया कि ठीक है मैं डायरेक्शन नहीं करूंगा, ये मैं पेपर पे लिख करके तुम्हें दे दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इस फिल्म के हीरो हीरोइन को भी चेंज करना है तो वो नहीं होगा। हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे पास एक कोट है, मैं उस कोट को उनके सर पे डाल दे रहा हूँ और फोटो आने दो। गुलशन कुमार को बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी महेश भट्ट से वो डरते बहुत थे, तो उन्होंने हामी भर दी और हीरो हीरोइन के चेहरे पर कोट डाल करके फोटो खींची गई। पोस्टर्स में यही रिलीज हुआ। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बातें हमारी यूं ही चलती रहेंगी ओनली ऑन 91.2 FM, आशिकी के बारे में पर्दे के पीछे, सिर्फ 91.2 FM हेलो बनारस पर, क्योंकि बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। और आज हम पर्दे के पीछे में बात कर रहे हैं फिल्म आशिकी। आशिकी की रिलीजिंग के पहले गुलशन कुमार हर कदम पे डरा करते थे क्योंकि इसके गाने उन्हें पाकिस्तानी गजल एल्बम जैसे लगते थे, लेकिन जब महेश भट्ट ने उन्हें इंश्योर कर दिया तब उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म के रिलीजिंग के साथ ही नदीम श्रवण की जोड़ी और कुमार सानू, राहुल रॉय, अनु अग्रवाल, अनुराधा पौडवाल, ये सारे रातों रात स्टार बन गए। आशिकी का म्यूजिक इतना पॉपुलर हुआ कि टी सीरीज ने 1 करोड़ कैसेट बेचने के बाद इनकी गिनती बंद कर दी। नदीम श्रवण को इस फिल्म के लिए अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जबकि समीर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार, अनुराधा पौडवाल को मिला सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर महिला, और कुमार सानू ने इस फिल्म के ज्यादातर गाने गाए। और इस

इस गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर पुरुष का फिल्म फेयर अवार्ड मिला कुमार सानू को। इस फिल्म की सफलता के बाद राहुल राय जैसे हेयर स्टाइल का एक नया ट्रेंड आया और सलून में उनके स्टाइल वाले हेयर कट के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। फिलहाल अभी हमारा शो यूं ही चलता रहेगा 91.2 FM हेलो बनारस पर, क्योंकि पर्दे के पीछे में आज हो रही है बात आशिकी के बारे में। तो बस आप ध्यान लगाकर यूं ही सुनते रहिए सुधांशु को सिर्फ 91.2 FM हेलो बनारस पर, क्योंकि भैया बोले तो सिर्फ और सिर्फ यही है पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: 91.2 FM, हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी। ओहो, व्हाट अ बिजी डे। डॉक्टर साहब, ये जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है?
3: व्हाट अ लॉन्ग लास्टिंग क्वेश्चन। देखो यार, जिराफ की गर्दन इसलिए ऊंची होती है क्योंकि कभी कभी कुछ लोग रात चलते गले पड़ जाते हैं भाई।
2: 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई?
4: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या

0: पर्व मनाए, कांवर यात्रा को भव्य बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
3: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
2: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आए मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
4: बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
5: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
4: अरे, आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज है।
6: है ना, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
7: बेटा, काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
8: अंकल, आती हूँ अंकल। अरे
7: अरे बेटा,
8: ये क्या कर रहे हो अंकल?
7: सुनो
8: गलत
7: तो,
8: है ये।
7: अरे सुनो बेटा
8: अंकल।
9: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
10: 91.2 FM हेलो बनारस।
11: हेलो बनारस।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज हम पर्दे के पीछे में बात कर रहे हैं फिल्म आशिकी के बारे में, जो कि 1990 में रिलीज हुई। और बजट की अगर हम बात करें तो लगभग 50 लाख रुपए बजट आए थे, कमाई 7 times ज्यादा किया था इसने। आशिकी मूवी 52 हफ्ते तक सिनेमा घरों में हाउसफुल चली थी। अपने कम बजट के बाद भी इसने लगभग 7 गुना से ज्यादा कमाई की। और अगर हम संगीत की बात करें तो टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार जी ने 1 करोड़ के बाद जितने भी कैसेट बिके उनकी काउंटिंग ही बंद कर दी थी, क्योंकि बिल्कुल रेवड़ियों की तरह इसके कैसेट बिक रहे थे।

इस फिल्म की सफलता का एक बड़ा रीजन ये भी था इसका म्यूजिक, जिसने 2 करोड़ से ज्यादा ऑडियो कैसेट बेचे। हालांकि गुलशन कुमार जी ने 1 करोड़ के बाद इसकी काउंटिंग बंद कर दी थी। अब अगर हम इसके हीरो राहुल रॉय की बात करते हैं तो उनका थोड़ा बैड लक था। जैसे ही उन्होंने आशिकी मूवी की, उसके बाद उनके पास प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। उन्होंने 90 से ज्यादा फिल्में साइन कर ली, लेकिन 70% से ज्यादा फिल्में तो शुरू ही नहीं हुई, और जो शुरू भी हुई उसमें 5-6 फिल्में ही रिलीजिंग तक पहुंच पाई, और जिसकी कहानी इन्होंने बिना पढ़े ली थी, ऐसे में इनका फ्लॉप हो जाना लगभग तय हो गया। और वही हुआ भी। आशिकी के बाद जुनून नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें ये लॉयन बन जाते थे और उनका करियर चल नहीं पाया। कुल मिलाकर के हम यूं कह सकते हैं कि आशिकी मूवी ने कईयों के करियर को संवार दिया। तो बातें आज आशिकी मूवी में बस इतना ही, पर्दे के पीछे में। अगली बार हम होंगे आपके सामने एक नए कलाकार को लेकर के अपने पर्दे के पीछे में। बस आप सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस, क्योंकि बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.
2: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
3: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
2: अरे बेटा,
3: ये क्या कर रहे हो अंकल?
2: सुनो
3: गलत
2: तो,
3: है ये।
2: अरे सुनो बेटा
3: अंकल।
4: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
5: मनुष्य, नर्क जाने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा?
6: महाराज अब क्या ही बताएं, जिंदगी भर पत्नी की सुनते आए हैं, अब अपनी आखिरी समय में 91.2 हेलो बनारस सुनना चाहता हूँ।
5: चित्रगुप्त, इस मनुष्य की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही।
6: जो आज्ञा महाराज।
5: चित्रगुप्त, ये कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
6: महाराज इस डिब्बे को दीजिए तोड़ और 91.2 FM हेलो बनारस के ऐप को कीजिए डाउनलोड और हो जाइए मनुष्यों की तरह डिजिटल।
7: जी हाँ, अगर आप भी इनकी तरह देश और दुनिया के किसी भी कोने में 91.2 FM हेलो बनारस सुनना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर जाएं और 91.2 FM हेलो बनारस की ऐप को इंस्टॉल करें।
8: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
9: पक्का बनारसी।
10: सेवानिर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
11: अरे बहन इतनी परेशान क्यों हो?
12: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
11: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
2: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
13: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
2: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
14: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।

0: बिहार के शान भोजपुरिया लोगन के जान। आप सब खातिर हम ले आयल बानी भोजपुरी तड़का, जहां आप सबन के मिली भोजपुरी के हर मिठास से भरल खाटी भोजपुरी गाना। तो आ जाइए हमने के साथ सुनत रहे 91.2 FM हेलो बनारस पर रोज सांझे 4 से 5 बजे भोजपुरी तड़का। हमार भोजपुरी हमार गौरव।
1: 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी।

अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 FM से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।

यूपी बिहार के शान भोजपुरिया लोगन के जान आप सब खातिर हम ले आयल बानी भोजपुरी तड़का, जहां आप सबन के मिली भोजपुरी के हर मिठास से भरल खाटी भोजपुरी गाना। तो आज आई हमनी के साथे सुनत रहे 91.2 FM हेलो बनारस पर रोज सांझे 4 से 5 बजे भोजपुरी तड़का। हमार भोजपुरी हमार गौरव।

0: 91.2 FM. Hello Banaras,
1: Pakka Banarsi.
2: Pakka Banarsi.
3: Bhakti Yatra.
0: जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है। अब उभरते ज्वार का आवेग मध्यम को चला है, एक हल्का सा धुंधल का था कहीं कम हो चला है। ये शिला पिघले न पिघले, रास्ता नम हो चला है। क्यों करूं आकाश की मनुहार, अब तो पथ यही। क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन फूट जाए। एक मामूली कहानी है, अधूरी छूट जाए। एक समझौता हुआ था रोशनी से, टूट जाए। आज हर नक्षत्र है अनुदार, अब तो पथ यही। ये लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है, ये घुटन ये यातना केवल किताबों में पढ़ी है। ये पहाड़ी पांव क्या चढ़ते, इरादों में चढ़ी है। कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है। अब तो पथ यही है।
3: प्रस्तुत पंक्तियां दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। कुमार द्वारा पंक्ति यात्रा, पंक्ति यात्रा, पंक्ति यात्रा।
4: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना, तो तैयार हो जाइए। मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
5: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
4: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
5: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
4: और सबसे खास, देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
5: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
4: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
5: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
4: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।

0: कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मेरा जिला सांबा है और तहसील मेरी रामगढ़ है। मेरे को खेती करते कोई कोई 10-15 साल हो गए। जमीन मेरे पास 16 कनाल है, खड़ी फसल पर ओले पड़े हैं, सारी बर्बाद हो गई। इस बार धान की फसल का मिला है 63,000 मुआवजा मिला था, बहुत फायदा हुआ इसका। जो बहुत जरूरी है, दोनों फसल का जो करवाना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
5: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
6: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 FM से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।
7: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
8: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
9: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
8: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
10: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
11: पक्का बनारसी।
12: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
13: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
12: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
14: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।

0: बिहार के शान भोजपुरिया लोगन के जान। आप सब खातिर हम ले आयल बानी भोजपुरी तड़का, जहां आप सबन के मिली भोजपुरी के हर मिठास से भरल खाटी भोजपुरी गाना। तो आज आई हमनी के साथे सुनत रहे 91.2 FM हेलो बनारस पर रोज सांझे 4 से 5 बजे भोजपुरी तड़का। हमार भोजपुरी हमार गौरव।
1: 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी।

0: थी। व्हाट अ बिजी डे।
1: डॉक्टर साहब, सुना है आपके पड़ोसी कोमा में चले गए।
0: देखो यार, जिनके पास पैसा होता है वह कहीं भी जा सकता है भाई। 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई।
2: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: हाँ बाबू।
3: हेलो दीदी, सुना ना, सब्जी दाल बनावे के बा हमके। हमरा तनिको मालूम नहीं खे कि कैसे बनी।
2: कौनो बात नहीं खे, सुना, एगो काम करो।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi. Pakka Banarsi.
1: पंक्ति यात्रा।
2: मैं जिसे ओढ़ता हूँ बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। ये कौन सा फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ।
1: पंक्ति यात्रा।

0: नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना तो तैयार हो जाइए। मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
1: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
0: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
1: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
0: और सबसे खास देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
1: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
0: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
1: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
0: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
2: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
3: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
2: अरे बेटा,
3: ये क्या कर रहे हो अंकल? गलत है ये।
2: अरे सुनो बेटा।
3: अंकल,
4: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
5: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़ूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
6: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
7: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
6: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़ूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
8: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
9: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
8: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
10: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
11: कट मारा है, मजा ही आ गया।
12: अरे अरे अरे, कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
13: अरे भाई और तेज भागा।
4: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी। अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 FM से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।

0: लाइट्स ऑन, इसकी है वाइब स्ट्रॉन्ग। अब सुनिए इवनिंग गपशप आरजे अमीशा के साथ, मंडे टू फ्राइडे शाम 6 से 9, ओनली ऑन 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: इवनिंग गपशप
2: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: लाइट्स ऑन, इसकी है वाइब स्ट्रॉन्ग। अब सुनिए इवनिंग गपशप आरजे अमीशा के साथ, मंडे टू फ्राइडे शाम 6 से 9, ओनली ऑन 91.2 एफएम। हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: इवनिंग गपशप
2: 91.2 एफएम, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
3: पक्का बनारसी।
4: तुम लोग ये भूल गए कि डॉन जख्मी है तो क्या, फिर भी डॉन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।

91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.

0: हिट्स ऑन, इसकी है वाइब स्ट्रॉन्ग। अब सुनिए इवनिंग गपशप आरजे अमीशा के साथ, मंडे टू फ्राइडे शाम 6 से 9, ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: इवनिंग गपशप
2: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, यानी बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: और आज की हमारी कहानी पहुंचती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस शहर में जिसने इतिहास में क्रांति की चिंगारी जलाई, खेल के मैदानों में देश का नाम रोशन किया और आज विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: जी हाँ, बात हो रही है मेरठ की।
1: मेरठ यानी 1857 की क्रांति की ऐतिहासिक धरती, देश के खेल सामान उद्योग की बड़ी पहचान और आज एक ऐसा शहर जहां परंपरा और आधुनिक विकास दोनों साथ साथ कदम बढ़ा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और मेरठ की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानती हो?
1: बताइए।
0: यहाँ विकास सिर्फ सड़कों, इमारतों और उद्योगों की कहानी नहीं है। विकास तब पूरा होता है जब सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आम परिवार के जीवन में खुशियाँ लेकर आए।
1: और इसी सोच को केंद्र में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अलग अलग वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में जन कल्याण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ने पर जोर दिखाई देता है।
1: और इसी क्रम में सरकार की योजनाएं कोशिश कर रही हैं कि विकास का लाभ समाज के उन परिवारों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
0: इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना।
1: सोचिए, एक परिवार के लिए बेटी का विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं होता, वो वर्षों का सपना होता है, जिम्मेदारी होती है और कई बार आर्थिक चिंता भी।
0: ऐसे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक सहारा बनकर सामने आती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र जोड़ों का सामूहिक विवाह कराना और उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
1: योजना के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पात्र जोड़े को सरकार की ओर से कुल 1,00,000 रुपए तक का प्रावधान है। इसमें 60,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 25,000 रुपए की विवाह सामग्री और 15,000 रुपए का आयोजन संबंधी खर्च शामिल है।
0: यानी मदद सिर्फ चेक तक सीमित नहीं बल्कि बेटी के नए जीवन की शुरुआत को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश है।
1: और यही तो है जन कल्याण की असली तस्वीर, जब सरकारी योजना फाइलों से निकलकर किसी परिवार की मुस्कान बन जाए।
0: अब जरा सुनते हैं मेरठ की दो ऐसी युवतियों की आवाज जिनके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उनके परिवार की खुशियों का हिस्सा बनी। हमारा एक खास कार्यक्रम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और इसमें लाभार्थियों की जो कहानियां हैं वो आपके बीच हम साझा करते हैं। मेरे साथ इस वक्त दो लाभार्थी यहां पर मौजूद हैं, एक का नाम है दीपांशी और दूसरी का नाम है छवि, और दोनों को लाभ मिला है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का, जो एक बहुत ही अच्छी योजना है। बहुत युवतियां, बहुत युवक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो सबसे पहले छवि और दीपांशी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू।
0: छवि, आप मुझे बताओ कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसके बारे में आपको कैसे पता चला?
2: हमारे गांव के पंचायत घर से हमें पता चला इसके बारे में, तो वहां से हमने जानकारी ली इस योजना के बारे में।
0: ओके, तो जब योजना के बारे में आपको पता चला तो आगे की प्रक्रिया

0: कैसे किया आपने, क्या किया फिर?
1: इसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है जो जन सेवा केंद्र पे जाके हमने भरा है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो तैयार किए, फिर हमने जन सेवा केंद्र पे जाके फॉर्म भरवाया है।
0: तो जब आपका फॉर्म भरा गया था छवि, तो फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे आपके?
1: डॉक्यूमेंट तो आधार कार्ड और जी
2: बैंक की किताब लगी थी, और पैन कार्ड की, और फोटो लगे थे, और राशन कार्ड की लगी थी।
0: अच्छा, कब हुई है आपकी शादी?
2: 27 जुलाई।
0: ओके, तो क्या क्या लाभ मिले हैं इस योजना से आपको?
2: सम्मान मिला है और पैसे आगे खाते में।
0: क्या क्या सामान मिला है
2: उसमें? कम्बल है और कुल मतलब 51 बर्तन है, और उसमें तकिए हैं, गद्दे हैं, और इटैची है, मतलब उसमें सारा सामान है।
0: और कितना कैश आएगा आपका?
2: 64,000
0: खाते में आएगा। छवि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कौन सी डेट को आपकी शादी हुई?
1: 27 जुलाई को हुई थी हमारी शादी।
0: तो शादी के बाद क्या पॉजिटिव चेंज आए हैं आपकी जिंदगी में?
1: अच्छा लग रहा है, काफी चेंजेस आए हैं, तो सही चल रहा है, मतलब सब
0: लाइफ आसान हो गई है।
1: हाँ।
0: छवि, हमारे श्रोताओं को बताओ कि क्या क्या सुविधा आपको इस योजना के अंतर्गत मिली है।
1: तो हमें सामान मिला है, कुछ जरूरत की चीज मिली है, और कैश मिला है।
0: कौन से गांव में आपकी शादी हुई है?
1: चंदसारा।
0: चंदसारा में। हस्बैंड ठीक है आपके?
1: हाँ ठीक है।
0: कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
1: नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: तो इस तरह की जो स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की, कितनी सहायक हो सकती है ये समाज के लिए, या फिर उन वर्ग के लोगों के लिए जो थोड़े से गरीब वर्ग के लोग हैं?
1: हाँ, बहुत सहायक है ये, और लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, सभी सेवाओं का फायदा उठाना चाहिए जो चल रही है, जो गवर्नमेंट ने ये निकाली है।
0: छवि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म भरने के बाद क्या प्रक्रिया हुई, आगे कैसे हुआ सब?
1: फॉर्म भरने के बाद फिर सबमिट कर दिया वो ब्लॉक में जाके, और उसके बाद फिर डेट मिली है हमको कि 27 तारीख को आपको वहाँ पे जाना है। कार्ड आया था, उससे पता चला, फिर वहाँ पे गए।

0: हाँ वही मतलब अच्छा कर रहे हैं वो, योगी भी और मोदी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो गरीब फैमिली है उनको काफी योजना निकाल रहे हैं, नई नई योजना आ रही है, तो अच्छा ऐसे चलता रहना चाहिए।
1: और भी बहुत सारी ऐसी युवतियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है बहुत वक्त से, या फिर पैसे की तंगी है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, उनको क्या संदेश आप देना चाहोगी?
0: इनको बस यही कि उनको जानना है इस चीज के बारे में, या नहीं पता होता बहुत से लोगों को कि क्या योजना आ रही है सरकार की तरफ से, तो बस उनको इस चीज का पता करना चाहिए प्रधान से या फिर किसी भी पंचायत घर में जाके इस चीज के बारे में पता करना चाहिए। ये तो हमारा अधिकार है, तो हमें नहीं डरना चाहिए इस चीज से, पूछना चाहिए सबसे।
1: छवि आप क्या संदेश देना चाहोगे?
2: योगी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ।
3: आपने सुना, किसी भी योजना की सबसे बड़ी सफलता उसके आंकड़ों में नहीं बल्कि उन चेहरों की खुशी में दिखाई देती है जिन तक उसका लाभ पहुंचता है।
4: वैसे मेरठ की बात हो और खेलों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
3: बिल्कुल नहीं, मेरठ को देश की स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पहचान मिली है। यहाँ क्रिकेट बैट, बॉल, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन और दूसरे खेल उपकरणों का बड़ा उद्योग है।
4: और यही तो है उत्तर प्रदेश की खासियत, हर शहर की अपनी पहचान, अपनी क्षमता और अपनी कहानी।
3: सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP पहल के तहत मेरठ की पहचान स्पोर्ट्स प्रोडक्ट से जुड़ी है, जिससे स्थानीय उत्पादों और उनसे जुड़े कारोबार को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
4: यानी मेरठ के मैदानों में खिलाड़ी पसीना बहाते हैं और मेरठ की कार्यशालाओं में कारीगर अपने हुनर से खेलों का सामान तैयार करते हैं।
3: वाह क्या बात कही आपने,
4: क्योंकि विकास वही है जहां हुनर को पहचान मिले, रोजगार के अवसर बढ़े और स्थानीय पहचान को नई उड़ान मिले।
3: और यही वजह है कि जब हम विकास का प्रदेश कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट से नहीं होता।
4: इसका मतलब है किसी बेटी के विवाह की चिंता कम होना, किसी कारीगर के हुनर को बाजार मिलना, किसी युवा को आगे का अवसर मिलना और किसी परिवार के चेहरे पर भरोसे की मुस्कान आना। दोस्तों फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको मिलाएंगे मेरठ की CDO यानी कि मुख्य विकास अधिकारी, जो कि 2023 से मेरठ शहर में कार्यरत हैं। मैम एक IAS ऑफिसर हैं और मैम ने मेरठ की तरक्की को, यहाँ पर हो रही प्रगति को बहुत ही करीब से देखा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन के कारण और CDO मैम के नेतृत्व के कारण मेरठ लगातार आगे बढ़ रहा है। मैम सबसे पहले स्वागत है आपका।
5: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
4: मैम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि मेरठ में चल रही है इस वक्त, जो मुख्य योजनाएं हैं?
5: इस वक्त मेरठ में बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेरठ आई थिंक एशिया का एक इकलौता ऐसा, SRTS भी चल रही है और मेट्रो भी चल रही है, पहले मेरठ एक्सप्रेस वे भी मेरठ में ही आया और अभी गंगा एक्सप्रेस वे का भी हाल फिलहाल में इनॉग्रेशन हुआ। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे रोड्स का जाल यहाँ मेरठ में बिछाया जा रहा है और जा चुका है, जिससे आज के टाइम पे कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेरठ इज आई थिंक नंबर वन व्हेन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश ऑन द व्हील। साथ ही में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाना, जहाँ पर हमारी सरकारी स्कूल्स में भी बड़ी सारी फैसिलिटीज के लिए हम ट्राई कर रहे हैं जो सारी प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है बच्चों को, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ टीचिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। इसके साथ में अगर हम किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि और बहुत सी ऐसी अलग परियोजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जहां उन्हें सब्सिडी दी जाती है, उन्हें फर्टिलाइजर्स उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। अगर हम युवा की बात करें तो PMGP एक बहुत अच्छी योजना सामने आई है जिसके अंदर उन्हें लोन दिया जाता है सब्सिडाइज रेट पे। इसके साथ ही हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में आयुष्मान कार्ड एक ऐसा गोल्डन कार्ड है जो 5 लाख तक का फ्री उपचार मरीजों को उपलब्ध कराता है किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी। और इस मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे पिलर्स हैं जिनके ऊपर ही एक मजबूत और विकसित प्रदेश की नींव रखी जा सकती है। और हमारे यहाँ पर आप किसी भी सेक्टर की बात कीजिए तो सभी में ही काम लगातार किया जाएगा।
4: जी मैम, एक योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा आप सभी को जानकारी दें मैम।
5: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेसिकली ऐसे निर्धन परिवारों की बच्चियों की शादी कराई जाती है जिसे खुद सरकार कराती है। इसके अंदर हाल फिलहाल में अभी जो धनराशि दी जाती है उसे भी बढ़ाया गया है, उसे भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसके अंदर सरकार ना सिर्फ उनको कुछ सामग्री देती है जैसे उन्हें ब्रीफ केस, गद्दा, चुनरी, कुछ साड़ियाँ, बेडशीट्स,

0: एक डिनर सेट ये सब देती है, साथ ही साथ उनके खाते में भी डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं। और इसके साथ में ही एक सामूहिक रूप में एक बहुत अच्छा वेडिंग हॉल तैयार किया जाता है, जिसमें उन सभी को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि वो वहाँ पर आए, शादी करें, और साथ ही में उनके परिवारजन, लड़कियों के परिवारजन और लड़कों के परिवारजन दोनों ही वहाँ आते हैं। विवाह संपन्न होता है और साथ ही में वहाँ पर उन सभी के लिए एक प्रीति भोज भी रखा जाता है, जिसके अंदर ये एक धर्म निष्पक्ष चीज है, जहाँ पर दोनों ही, हिंदू भी और मुस्लिम परिवार दोनों की ही शादियां करवाई जाती है।
1: जी मैम, क्योंकि आपको 3 साल हो चुके हैं मेरठ में आपके कार्यकाल को, तो आपके अनुसार मैम जो मेरठ के लोग हैं, खासकर जो ग्रामीण लोग हैं, किस प्रकार इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं? वो क्या आपके पास आते हैं बताने के लिए कि मुझे ये योजना मिली है और इससे मुझे फायदा हुआ है?
0: बिल्कुल, जब हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सीधा सीधा गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा मिला है। जब हम पेंशन की बात करें, चाहे हम कोई भी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, इन सभी का लाभ उन लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। शिक्षा की बात करें तो आज हर एक गांव में एक बहुत अच्छा स्कूल स्थापित किया गया है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर हर एक गांव में बसाया गया है। वहाँ सर जो गांव की सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हो गई है। हर एक गांव में आज एक पंचायत घर बनाया गया है, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। और मैं खासकर ये बात बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ मेरठ में जो डिजिटल लाइब्रेरीज या जो पंचायत घर में लाइब्रेरी बनाई गई है, उसमें आज के दिन में टोटल 1231 बच्चे ऐसे है जिन्होंने अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो पुलिस भर्ती हो या फिर SSC CGL हो या फिर UPSC हो, इन सब में उत्तीर्ण हुए हैं, वो उन्होंने सफलता पाई है। तो मेरा मानना है कि ये जो सरकार की सारी स्कीम्स है, शासन की सारी परियोजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सरकार लोगों तक पहुंचाती है। और हम सब लोगों का भी यही एक ट्राई हमारा रहता है, कोशिश रहती है कि हम सब उन सभी लोगों तक जा सके और उन सभी लोगों की मदद कर सके जो इनके इच्छुक है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर गांव में समूह की महिलाएं भी बहुत अच्छा काम कर रही है। एक हमारे यहाँ पर समूह की महिला है जो फूलों की खेती कर रही है खेरकौदा में, एक समूह की महिला है जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बना रही है, उसको अलग रेसिन कोट करके वो जयपुर में अपना माल सप्लाई करती है। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दीदियां हैं जो आज लखपति दीदी बन
1: गई है।
0: यहाँ मेरठ जनपद में हमने ना सिर्फ इन सब बट आशा बहुओं का भी बहुत ध्यान रखने की कोशिश की। यहाँ पर DM सर के नेतृत्व में एक आशा पेकेट के प्रोग्राम चलाया गया
1: जी,
0: जिसके अंदर आज के दिन हमारी जो एक एवरेज आशा जो सैलरी पा रही है, जो एक पैसे पा रही है मंथली, वो लगभग 9,000 के लगभग पहुंच गए हैं। जिसके अंदर अभी हाल फिलहाल भी DM सर के द्वारा हमारे यहाँ पर 4 ऐसी आशाओं को सम्मानित भी किया गया था वॉशिंग मशीन देकर, जो सबसे ज्यादा पैसे पा रही थी। और मैं ये बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ कि वो चारों ही आशा 14 से 15 हजार रुपए प्रति महीना वो कमा रही थी। तो ये सभी चीजें दर्शाती है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हम लोग एक अच्छी दिशा में आगे प्रगति कर रहे हैं।
1: जी मैम, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, जो गांव के लोग होते हैं मैम, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, आपके ऑफिस में भी काफी लोग आते हैं मैम, सारी योजनाओं का तो सभी को नहीं पता होगा, तो लोगों तक योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए मैम विभाग की तरफ से मैम क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं?
0: हर एक सेक्टर अपना अलग अलग कार्यक्रम करता है और साथ ही में हमारे द्वारा भी एक कन्वर्जेंस भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि समय समय पर यहाँ पर ग्राम चौपालों का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर पूरा पूरा प्रशासन उठ के वो गांव में जाता है और वहाँ सभी लोगों को सभी स्कीम्स के बारे में बताता है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बहुत सारे पैम्फलेट्स बांटे जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में उन्हें इन्वाइट किया जाता है। जैसे अगर मैं अगर कृषि की बात करूं तो कृषि में हमारे द्वारा ऐसी बहुत सारी चीजें की जाती है, जहाँ पर यहाँ से साइंटिस्ट, जिले से साइंटिस्ट या हेडक्वार्टर से साइंटिस्ट उनके गांव में जाते हैं और उन्हें बताते हैं, और वाइस वर्सा भी, उन्हें भी बहुत बार ब्लॉक्स पे या फिर हेडक्वार्टर्स में बुलाया जाता है कि वो लोग यहाँ आके सीखे और जानकारी ले। जैसे अगर मैं DPO विभाग की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कन्या सुमंगला योजना जैसे हो गई, जिसमें पहले लोगों को शिक्षित किया जाता है और फिर उनका लाभ उनके द्वारा लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे बैनर्स सोशल मीडिया सर डीएम सर का कमिश्नर सर का और सूचना विभाग के द्वारा भी समय समय पर न्यूज़पेपर्स में सोशल मीडिया में बैनर्स में बड़े बड़े ये चीज बहुत सारे लोगों तक बताई जाती है और साथ ही में आपका रेडियो भी हमारी बहुत बहुत हेल्प करता है ये सब चीजें आम जनता तक पहुंचाने के लिए। तो मेरा मानना है कि जिस जिस प्लेटफॉर्म पर हम जैसे जैसे सोच सकते हैं हम लोग वैसे ट्राई करते हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। जैसे कल ही एक कॉन्क्लेव हुआ जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया गया जो कैटल फार्म चलाते हैं या जो पशुपालन से रिलेटेड है, तो ऐसे भी बहुत सारे कॉन्क्लेव यहाँ पर कराए जाते हैं।
1: जी मैम, क्योंकि हमारा जो एक कार्यक्रम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश जागरूकता के लिए है, लोगों तक हम योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, बेसिकली मेन पर्पस है अवेयरनेस, तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम?
0: हाँ, मैं सभी लोगों से यहाँ पर आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगी कि आप सभी लोग जागृत रहिए। यहाँ पर आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी न्यूज भी फैलाई जा रही है जो भ्रामक है, जो सही नहीं है, तो एक बार प्लीज फैक्ट चेक कीजिए। कोई भी चीज जो आप सोशल मीडिया में पढ़ते हैं या आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पढ़ते हैं वो सही नहीं भी हो सकती है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, देश के हित के लिए काम कीजिए और आप खुद तरक्की कीजिए ताकि देश भी आपके साथ तरक्की करे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2047 तक हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए हमें एक हमें अपने प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है और उसके लिए हम सभी को सब बहुत अच्छे से एकदम एड़ी चोटी पर जोर लगा के काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा देश वो हर बुलंदी पर पहुंचे जहां पर वो पहुंचने का हकदार।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विकास और जन कल्याण को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है
1: और इन प्रयासों की खासियत यही है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों की स्थानीय जरूरतों और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की नई संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया जा रहा है।
2: मेरठ इसकी एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है, एक तरफ इतिहास की विरासत, दूसरी तरफ खेल और उद्योग की ताकत और साथ में सामाजिक कल्याण की योजनाओं से जुड़ती नई उम्मीदें। मेरठ ने 1857 में बदलाव की एक चिंगारी देखी थी
1: और आज वही मेरठ नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में अपनी अलग पहचान बना रहा है।
2: मेरठ जहां खेल का हुनर है,
1: जहां उद्योग की ताकत है,
2: जहां इतिहास की विरासत है
1: और जहां जन कल्याण की योजनाओं से जुड़ती हैं उम्मीदें।
2: तो ये थी मेरठ से विकास की एक ऐसी कहानी
1: जिसमें आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोग, उनके सपने और उन सपनों को मिलती नई दिशा,
2: क्योंकि उत्तर प्रदेश बदल रहा है
1: और जब प्रदेश आगे बढ़ता है तो शहर की कहानी विकास की कहानी बन जाती है।
2: आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।

अरे हलवा वाला नहीं, चाट वाली आई है। 91.2 FM हेलो बनारस पर असली बनारसी चाट नहीं बल्कि अपनी चटपटी बातों के साथ हाजिर है आपके शाम का नूर दूर करने आपका चश्मे बद्दूर ठेठ बनारसी आरजे अमीशा। तो बने रहो मेरे साथ जानने के लिए अतरंगी लोकल अपडेट्स इन द शो इवनिंग गपशप शाम 6 बजे से 9 बजे तक ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी।

0: गपशप।
1: अब आफ्टर ऑल मेरा आपका खून का रिश्ता जो है,
2: बापू से हट के लिए तू तो हानिकारक है, बापू से हट के लिए।
1: 91.2 FM हेलो बनारस पर मैं हूँ आरजे अमीश और आप मुझे अपना अटेंशन दीजिए और मैं दूंगी आपको अपना खून यानी हीमोग्लोबिन। अरे रिलैक्स गाइस, मैं तो आज की हेल्थ अपडेट की बात कर रही थी। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, अगर आप लोग गांव से ताल्लुक रखते हैं तो आप सुपर फूड के बारे में जरूर जानते होंगे जिसका नाम है महुआ, जिसमें भर भर के आयरन, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन और जितने न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के लिए जरूरी है ना, सारे के सारे पाए जाते हैं। आप इसके फल को, फूल को या फिर इसकी छाल को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है भाई उसको भी बूस्ट करती है। तो फटाफट से बाजार जाओ और इसको खरीद के ले आओ ना यार। सुनते रहो 91.2 FM हेलो बनारस, ये है स्वास्थ्य वर्धक और पक्का बनारसी।

0: वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस. ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर
2: यात्रा हो गई है. पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए. हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए.
3: प्रस्तुत पंक्तियां दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है.
4: चाहे कोई कितना भी दूर चला जाए, गांव की याद हमेशा हमें वापस खींच ही लाती है. और गर्व तो तब होता है जब आपकी संस्कृति के बारे में पूरा देश और पूरा विश्व जान जाए. MGMT पोर्टल एक ऐसी ही पहल है. इस इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आज ही अपने गांव की ऑनलाइन पहचान बनाएं.

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर नाथी। ओहो, व्हाट अ बिजी डे।
4: डॉक्टर साहब, मुझे आकाश छूना है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं?
3: व्हाट अ पवन पंछी वाला क्वेश्चन। देखो यार, तुम्हें आकाश छूने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने घर के बाहर जाना है और दूसरे पड़ोस वाले आकाश को छू के आ जाना है भाई। 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई।
5: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
6: बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
7: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
6: अरे, आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
8: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
9: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
10: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
9: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
10: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
9: और सबसे खास, देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
10: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
9: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
10: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
9: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
11: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
12: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए, लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
11: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
2: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।

0: गपशप।
1: दोपहर की धूप और शाम का जाम, कहीं चैन ही नहीं है यार। 91.2 FM हेलो बनारस पर आपकी अमीशा के पास दोपहर की धूप और शाम के जाम का कोई सलूशन तो नहीं है यार, लेकिन हाँ एक बात है जो मैं आपको बता सकती हूँ, और वो बात ये है कि अगर आप इस समय रामनगर रोड से होते हुए लंका चौराहे की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको इस शाम वाली जाम का प्रकोप देखने को मिल सकता है। वहाँ पर आपको बहुत हैवी ट्रैफिक मिल सकता है, तो अगर हो सके तो वो जो रविदास गेट वाला रास्ता है ना, उसको ले लो भाई और ले लो शॉर्टकट। ऐसे ही ट्रैफिक अपडेट्स के लिए सुनते रहो आपका अपना 91.2 FM हेलो बनारस। बोले तो पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।

0: लागे गराज गराज की ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी जैसे भी हो शादी तुमसे।

यार ये बिल्ली आपा करना ना छोड़ दे। 91.2 FM हेलो बनारस पर आपकी अमीषा के जीवन में ना इतने स्वार्थी लोग भरे हुए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। उन्हें देखकर ना तो बस उस बिल्ली मौसी की याद आ जाती है, जो अपने मतलब के समय तो आपसे एकदम प्यार से बिहेव करेगी, लेकिन जहां आपको उसके साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करने का मन हो, मैडम जी ऐसे नखरे दिखाएंगी जैसे उनके एक बोल के खाने की वसीयत अपने नाम करवा ली हो। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे ही सेल्फ वाले फिश लोग हैं तो कॉल करो ना मुझे, मेरा नंबर है 9839912912 पर, और सुनते रहो 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: गपशप।
1: भैया ये तो हैवी वाली बेइज्जती हो गई।
2: अता मची सटक ली।
1: 91.2 FM हेलो बनारस पर आप सुन रहे हैं आरजे अमीशा को, और मशहूर नॉवेलिस्ट मोहन पाठक ने स्टेटमेंट दे डाला है कि हिंदी सिनेमा का कोई भी हीरो जेम्स बॉन्ड बनने के लायक नहीं है। अरे बाप रे, ये सुनने से पहले मेरे ईयरफोन्स में वायरस क्यों नहीं आ गया यार। और गॉसिप के गलियारों में ये खबर इतनी तेजी से इसलिए ट्रेंड कर रही है क्योंकि उनकी दो नॉवेल्स दौलत और खून और मौत का खेल पर हाल ही में एक डायरेक्टर ने वेब सीरीज बनाने का अनाउंसमेंट कर डाला है। और अपने उसी इंटरव्यू में पाठक जी ने ये कबूल किया है कि अगर उन्हें मजबूरी में किसी एक एक्टर को चूज करना पड़े ना तो वो ऋतिक रोशन से काम चला सकते हैं। भाई जीवन में भौकाल हो तो ऐसा हो। बाय द वे, अगर आप हिंदी मूवीज के किसी एक एक्टर को जेम्स बॉन्ड के रोल में देखना चाहते हैं तो वो कौन सा एक्टर होगा बताओ ना मुझे इसके बारे में। पिंग मी ऑन माय इंस्टा आईडी दैट इज आरजे अमीशा। और फिलहाल आप एंजॉय करते रहो ये गाना, सुनते रहो 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: 91.2 FM. Hello Banaras पे आ गए हैं डॉक्टर नाथी. What a busy day.
3: डॉक्टर साहब, एक बार मुझे स्पाइडर ने काटा तो क्या अब मैं स्पाइडर मैन बन जाऊंगा?
2: What a silly question. देखो यार, मैं भी अभी तुम्हें बैट से मार के देखता हूँ कि तुम बैटमैन बनते कि नहीं भाई.
4: 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी.
2: ऐसी मेरी सी आवाज में कौन परमिशन करता है भाई?
5: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
6: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी.
5: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ. तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी. आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता.
7: बीत गई सो बात गई. जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था. वो डूब गया तो डूब गया. अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे. जो छूट गए फिर कहाँ मिले? पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है? जो बीत गई सो बात गई.
8: प्रस्तुत पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है.
5: 91.2 FM हेलो बनारस से मैं हूँ आपकी बंदी बनारसी आरजे अमीशा. और यार, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, वाराणसी इज ऑलवेज बेस्ट. मैं ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद टूरिस्ट को कहते हुए सुना है कि भैया, असली सुकून तो बनारस में ही है. और दोस्तों, बनारस के जैसे ही अब आप सब अपने अपने गाँव के बारे में भी ऐसे ही प्राउडली किस्से कहानियाँ पूरी दुनिया को बता सकते हैं. मेरा गाँव मेरी धरोहर के जरिए. समझ नहीं आया तो ये सुनिए. मेरा

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।
3: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
4: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
5: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
4: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
5: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
4: और सबसे खास देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
5: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुंचे इंटरनेशनल लेवल तक।
4: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
5: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
4: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
2: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।

0: सत्यानाश।
1: तू भी था मेरे पास, मैं भी था मेरे पास, साले था मेरे पास, सब यहाँ
0: 91.2 FM हेलो बनारस पर मैं हूँ आपके अपनी आरजे अमीश। और हम सभी के घर में ना एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके हाथ पैर अपनी ऐठी में ही नहीं रहते।
2: बात तो सही है।
0: इन्हें ना कोई काम बोलने में भी डर ही लगता है। जैसे गदर में सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा था, कहीं ये भी आपके काम को उखाड़ न फेंके करने की बजाय। और आपकी लाइफ में भी अगर ऐसा कोई है तो बताओ मुझे ये बात मेरी इंस्टा आईडी दैट इज आरजे अमीश। और फिलहाल सुनते रहो ये गाना 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।

का मालिक गिरा दिला ना गड़ौरी में। 91.2 FM हेलो बनारस पर हर रोज अपने ऑटो टेम्पो वालों को समझा समझा कर आपकी हमेशा थक चुकी है कि भैया इतने स्पीड में चलाने का क्या मतलब है कि मंजिल आने से पहले ही गढ़ौरी में ही निपट जाए हम लोग, ये तो समझने से रहे, पर आप ये बनारसी शब्द गढ़ौरी समझ लो। इसे आप सिंपली किसी गड्ढे या निचले सरफेस के लिए यूज कर सकते हैं। आती हूँ एक गाना चलाकर। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

लाइफ में ना हो तो हमारा मन कहाँ लगने वाला है। और कंजूस प्रजाति के मनुष्यों की अगर बात करें ना, तो एक तो वो होते हैं जिनके पैसे हमेशा इमरजेंसी फंड के रूप में निकलते हैं कि आप कहीं अटक गए हो, कहीं हॉस्पिटल जाना या फिर बहुत ही बुरी सिचुएशन होगी तभी उनके पैसे निकलेंगे। और एक वो जिनके दिमाग में अभी भी बार्टर सिस्टम चल रहा है कि यार क्या लेगा पैसे, तू चल तुझे मोमो खिला देता हूँ, तो मोमो खाओ इनके, लेकिन मामू मत बनो। सुनते रहो 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
0: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आए मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
2: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
3: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
2: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
3: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
2: और सबसे खास, देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
3: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
2: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
3: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
2: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
4: सेवानिर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर, आशापुर, वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।

क्या फर्क पड़ता है कि दूसरे क्या सोचेंगे। 91.2 FM हेलो बनारस पर मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अमीशा। और लोग क्या सोचेंगे अगर हम भी ये सोचेंगे तो आखिर वो सच में क्या सोचेंगे यार। एक ही जीवन मिला है तो मेरी एडवाइस ना गांठ बांध दो, किसी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को मैच करने में मत निकालो यार, अपने दिल की सुनो। मिलूंगी आपसे अगले वीकेंड इसी जगह इसी टाइम पर, तब तक के लिए इंजॉय करो यार, अपने परिवार वालों का ध्यान रखो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो और सुनना मत भूलो 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। शुरू हो चुका है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में हम बात करेंगे गीतकार एवं कवि प्रदीप के बारे में, जिनका मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। जन्म हुआ 6 फरवरी 1915 में। स्वर्गीय प्रदीप जी भारतीय कवि एवं गीतकार थे, जो देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा था। और लता मंगेशकर द्वारा गाए गए इस गीत को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारण किया गया था।

इस गीत को सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखें भर आई थी। बातें हमारी आज चलेंगी सिर्फ कवि प्रदीप के बारे में। आप बस सुनते रहिए चिपक कर 91.2 FM हेलो बनारस, क्योंकि भैया बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज हम पर्दे के पीछे में बात कर रहे हैं कवि प्रदीप। पूरा नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। उनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़नगर नामक स्थान पर हुआ। कवि प्रदीप की पहचान 1940 की रिलीज हुई फिल्म बंधन से मिली। जब देशभक्ति के गीतों की बात आती है तो उसमें कवि प्रदीप का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने 1943 में एक फिल्म आई थी उनकी किस्मत, उसका एक गाना दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है।
2: आज हिमालय की चोटी से दिल हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है।
1: इस गाने ने उनको अमर कर दिया। इसी गीत से डर करके अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी के लिए ऑर्डर इशू कर दिए, जिससे बचने के लिए कवि प्रदीप को अंडरग्राउंड होना पड़ गया। अपने 50 साल के करियर में कवि प्रदीप ने 70 से ज्यादा फिल्मों में लगभग 1800 गाने लिखे, जिसमें फिल्म बंधन, चल चल रे नौजवान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, और भी ढेर सारी फिल्में हैं। बातें हमारी यूं ही चलती रहेंगी कवि प्रदीप के बारे में। बस आप सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस, क्योंकि बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: यात्रा।
1: मैं चुप शांत और अडोल खड़ी थी, सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था। फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया, उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। हैरान थी पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अब अपने शहर में कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली सकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुद्र की तरह इसे छाती पर रखकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे और नीची छतों और सकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढती भी थी और अपनी आँख का मैंने आप ही घूट पिया। मैं अकेला किनारा किनारे को गिरा दिया और जब दिन ढलने को था समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। अब रात घिरने लगी तो तू मिला है, तू भी उदास चुप शांत और अडोल, मैं भी उदास चुप शांत और अडोल, सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान है।
0: प्रस्तुत पंक्तियां अमृता प्रीतम द्वारा रचित है।
2: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 एफएम से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।
3: बिना बातों के जिंदगी कुछ ऐसी लगती है
4: जैसे संगीत बिना गीत के,
3: पर बातों के साथ जिंदगी कुछ ऐसी हो जाती है
4: जैसे धुन को अल्फाज मिल गए।

0: जाना क्योंकि वापस यही है आना।
1: सुनिए बातें कुछ अनकही सी, शनिवार और रविवार रात 8 से 10 ओनली ऑन 91.2 एफएम हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
3: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
4: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
3: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
4: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
3: और सबसे खास देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
4: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुंचे इंटरनेशनल लेवल तक।
3: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।

0: करें 7705909071 या फिर 7705909070।
1: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
2: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
3: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
2: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आए मेरिडियन हॉस्पिटल, लेढ़ोपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
4: बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
5: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
4: अरे, आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज है।
6: है ना, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
7: मनुष्य, नर्क जाने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा?
8: महाराज, अब क्या ही बताएं, जिंदगी भर पत्नी की सुनते आए हैं, अब अपने आखिरी समय में 91.2 हेलो बनारस सुनना चाहता हूँ।
7: चित्रगुप्त, इस मनुष्य की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही।
8: ड्रो आज्ञा महाराज।
7: चित्रगुप्त, ये कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
8: महाराज, इस डिब्बे को दीजिए तोड़ और 91.2 FM हेलो बनारस के ऐप को कीजिए डाउनलोड और हो जाइए मनुष्यों की तरह डिजिटल।
9: जी हाँ, अगर आप भी इनकी तरह देश और दुनिया के किसी भी कोने में 91.2 FM हेलो बनारस सुनना चाहते हैं, तो आज ही प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर जाएं और 91.2 FM हेलो बनारस की ऐप को इंस्टॉल करें।
10: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
11: पक्का बनारसी।
12: बेटा, काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
13: अंकल, आती हूँ अंकल। अरे
12: अरे बेटा,
13: ये क्या कर रहे हो अंकल?
12: सुनो
13: तो,
12: अरे सुनो बेटा
13: अंकल।
1: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद RJ सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM टू 3 PM एंड 9 PM टू 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
14: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज हम बात कर रहे हैं रामचंद्र द्विवेदी जी, कवि प्रदीप के बारे में। जब ये मुंबई आए और अपने रचनाएं लिखने लगे फिल्मों के लिए, ऐसे में प्रोड्यूसर हिमांशु रॉय के सुझाव पर इन्होंने कहा, यार इतना बड़ा नाम मत रखो आप। तब इन्होंने अपना नाम रख लिया प्रदीप। लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री के एक अभिनेता प्रदीप कुमार भी आ गए, ऐसे में पोस्टल की गलतियों से बचने के लिए उन्होंने अपने नाम के आगे कवि जोड़ लिया और ये हो गए कवि प्रदीप। कवि प्रदीप जी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और उन्होंने धन दौलत को कभी महत्व नहीं दिया। उनका मानना था कि अगर लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष न होता तो भारत कभी गुलाम भी नहीं होता। कवि प्रदीप को 1961 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1997-98 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्रदान की। उनके लिखे हुए गीत आज भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में बजाए ही जाते हैं। बातें हमारी चलेंगी आज सिर्फ कवि प्रदीप के बारे में। बस आप सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस पर, क्योंकि भैया बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। चला हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज हम पर्दे के पीछे में बात कर रहे हैं कवि प्रदीप के बारे में। कवि प्रदीप ने देशभक्ति के गाने तो लिखे ही, साथ ही उन्होंने भक्ति के भी गाने लिखे।
2: यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ।
1: जय संतोषी माँ फिल्म से। बिल्कुल ठीक समझा आपने, ये कुछ ऐसे गाने हैं कि संतोषी माता की ये आरती जबरदस्त सफलता पाई।

और जब ये गाना सिनेमा घरों में समाप्त होता था, ऐसे में फिल्म की समाप्ति के बाद लोगों ने चना और गुड़ का प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। जय संतोषी माँ फिल्म की सफलता को अगर हम देखें तो इसमें इस गाने की भूमिका सबसे ज्यादा है। कभी प्रदीप को कभी भुलाया नहीं जा सकता, बातें अगर भक्ति की हो या फिर देशभक्ति की, दोनों में प्रदीप सर का नाम सबसे ऊपर है। तो आज पर्दे के पीछे में बस इतना ही। अगली बार हम होंगे पर्दे के पीछे में एक नई कहानी लेकर। उम्मीद आरजे सुधांशु, तब तक आप सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस, क्योंकि बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारस।

0: Sí.
1: Hello. 91.2 FM. Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello,
1: Banaras.
3: 91.2 FM,

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM. Hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ तो

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
5: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: भाषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
3: Hello Banaras.
1: Allad pakka.

0: पंचम, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धाम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Allah.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM. Hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
4: Allad

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ तो

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello Banaras.
3: 91.2 FM. Hello Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस।
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: इतिहास से भी परे बनारस,
1: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
0: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
0: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
4: Allad

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, hello Banaras.
5: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
2: बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: A ladka

0: भीमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
2: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Allad pakkad.

0: मंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अलर्ट

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: Sí.
1: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
2: Alla

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: A ladka

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
5: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
4: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello,
3: Banaras.
2: 91.2 FM, hello, Banaras.
4: अलर्ट,

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस।
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
5: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
2: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
5: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस।
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
5: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस,
4: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भाषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: मंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ दुर्ग।

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
2: पक्का बनारसी।

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
5: 91.2 FM,
4: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़।

0: भूषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: शंख, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Allad pak.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
5: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु घुमक्कड़।

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello,
4: Banaras.
2: 91.2 FM, hello Banaras.
5: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो
5: बनारस,
6: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़,

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: पंचम, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: A ladka

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Allah.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पक्कड़

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धाम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello.
5: Hello.
4: Hello.
5: Hello.
3: 91.2 FM. Hello.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
5: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस,
4: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धाम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: शंख, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: मंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: A ladka

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.